की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pe. ये क्या सब कुछ सुनने को मिल रहा है? मतलब अब ये आप ये करने वाले हो? ओके, थोड़ा सा अनबिलीवेबल सा लगा, बट ठीक है, जो है सो है, मे बी दैट्स द नेक्स्ट थिंग। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर पहुंच चुके हैं 8 बजे के उस पार, 8 बजकर हो चुके हैं 6 मिनट। मैं अंतरा आपके साथ, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्यूजडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब कितना गुड है इसको सुनने के बाद वो आप डिसाइड कर लेना। देखिए, एक नाम जो हमारे सिंगिंग की दुनिया में विच इज वेरी वेल नोन इज हमारा अरिजीत सिंह। हालांकि अब उन्होंने ब्रेक ले लिया है, उन्होंने कहा है कि अब ही हैज अदर थिंग्स टू डू। उन्होंने जितना बॉलीवुड में गाना था और जितने इस चीज को कमर्शियल चीजों के पीछे भागना था, उन्होंने भाग लिया है। अभी देर आर बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ, विच इज कम्प्लीटली ओके, राइट? हम सभी ने उसको, उनके इस डिसीजन को दोनों बाएं फैला के समझी के जैसे बिल्कुल एक्सेप्ट किया। बट खबर कुछ ऐसी आ रही है, उड़ती उड़ती मार्केट में ऐसे फैली हुई है, दैट अरिजीत सिंह जो है अब वो डायरेक्टर की सीट पे बैठने वाले। एंड नॉट, दिस इज नॉट, आई एम म्यूजिक डायरेक्टर की बात नहीं कर रही हूं, मैं फिल्म डायरेक्टर की बात कर रही हूं। एंड कहा जा रहा है कि ये जो है अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू का फर्स्ट स्केड्यूल जो वो रैप भी कर चुके हैं। सो इट्स apparently a project, it's said to be a large scale pan india adventure project. Arijit Singh ka jo hai first venture hai as a filmmaker. Is it true? This meko to matlab ye khabar padhte hue aisa lag raha hai ki aise hi bana diye inhone khabar, matlab kuch mila nahi to kuch likh dete. But anyways, so his transition from music to direction has already kind of created ek significant excitement keh sakte ho, but also ki पीपल आर क्वेश्चनिंग कि क्या हो गया ऐसा, भाई क्या हो गया, ऐसी क्यों जरूरत पड़ गई। एंड

जा रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो डॉटर है शोरा सिद्दीकी, उनके इस वेंचर में डेब्यू करने वाली है अलोंग साइड अरिजीत सिंह का बेटा. वो कब इतना बड़ा हो गया? मतलब आई नो आई एम साउंडिंग लाइक बुआ जी की है, अरिजीत का बेटा इतना बड़ा हो गया, कब हो गया? बट वेल या इट्स नाउ द ऑफकोर्स द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, एंड ये अभी भी रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड वाले सेक्शन में जा रहा है. बट आर यू सीरियस? लाइक ओके, ऐसा वैसे हो चुका है हमारे इंडस्ट्री में. हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर साहब जो हैं, उन्होंने डिसाइड किया था और उन्होंने फिर एक मूवी बनाई जिसमें वो प्रोड्यूसर भी खुद थे, डायरेक्टर भी ऑलमोस्ट वो खुद ही थे, म्यूजिक डायरेक्टर डेफिनेटली वो थे और हीरो भी वो थे. कैन यू गेस विच सेलेब्रिटी आई एम टॉकिंग अबाउट? आपने उनके गाने भी बहुत सुने हुए हैं. काफी काफी सुने हुए हैं. Why am I getting nasal? That was a hint. Good morning.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zach Salon India are the special discount sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zach Salon India RD special discount sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Shop, win, travel only at Zach Salon India RD special discount sale.
5: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
6: ये रात रात भर में इतना सब कुछ हो कैसे जाता है? ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, लाइक एवरीबॉडी पोस्ट देयर साइड ऑफ वीडियोस एज वेल। ओके, कुछ हुआ है। आओ गॉसिप करें। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराप के साथ 8:00 हो चुके हैं 19 मिनट। भाई रात रात में नसीर साहब वर्सेस अनुपम खेर हो गया एंड पता भी नहीं लगा। सुबह उठे तो पता चला कि भाई बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि एक तरफ से बम्बार्डमेंट हुई है तो दूसरी तरफ से का जवाब भी आ चुका है। तो हुआ कुछ ऐसा कि नसीर साहब जो है उन्होंने हमारे अनुपम खेर जी के लिए मतलब बात करते करते इंटरव्यू देते देते कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो उनको मतलब कहते हैं ना कि हाउ व्हाट वर्ड्स यू यूज एंड व्हाट टोन यू यूज इट मैटर्स अ लॉट राइट। सो वेल उन्होंने अब मैं अपनी जुबान से क्या ही बताऊं, बट नसीर साहब ने कुछ ऐसा कहा और उसके जवाब में जो है हमारे अनुपम खेर जी जो है उन्होंने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया। जस्ट लिसन टू दिस।
7: अनुपम खेर हैज बीन वेरी वोकल, ही इज आई डोंट थिंक ही नीड्स टू बी टेकन सीरियसली, ही इज अ क्लाउन, ही एनी नंबर ऑफ हिज कंटेंपरेरीज फ्रॉम एनएसडी एंड एफटीआई कैन अटेस्ट टू हिज साइकोपैथिक नेचर। It's in his blood, he can't help it.
8: जनाब नसरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा, आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा, पर आप जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे, आपका शुभ चिंतक अनुपम। और आप जानते हैं मेरे
6: ओ माय गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड। मैं तो पहली बार देख के मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि आई वी श्योर डीप फेक तो नहीं है ना नसीर साहब और अनुपम खेर जी के बीच में, ये कैसी बातें हो रही है। ओके, सो इट इज व्हाट इट इज। सो आपने अपने कानों से जो है बिल्कुल सुना और ये है करंट सिचुएशन। अब इसके आगे क्या होता है वो ऑफ कोर्स वी शैल कीप यू पोस्टेड ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ओके, या दिस हैपेंड, दिस रियली हैपेंड। गुड मॉर्निंग।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
5: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
6: द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
7: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
8: बाजू
3: ट्रैफिक अपडेट
9: एकदम आजू बाजू हर जाने का, क्योंकि ट्रैफिक अपडेट का हो चुका है टाइम। इस घंटे 8:35 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। ट्रैफिक अपडेट कुछ ऐसा कहता है दैट व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन कैपिटल रोड टूवर्ड्स अगर आप जा रहे हैं सिटी आफ्टर AYE टूवर्स, अवॉइड करें लेन नंबर 3। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन वुडले अंडर पास टूवर्ड्स टैंपनीस बिटवीन बाटले वायोडक्ट एंड CTE, और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन फेरर फ्लाईओवर टुवर्ड्स अगर आप जा रहे हैं क्वींसवे बिटवीन हॉलैंड रोड एंड PIE टुवर्स। वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक वाला अपडेट। एकदम भारी भरकम ट्रैफिक हर जगह। फिलहाल हो जाते हैं मलंग विद द अगला गाना सचेत टंडन की आवाज में ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: Well, जहाँ पे एक तरफ हमारे लेजेंड्स जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो जेन ज़ी है यानी कि लेटेस्ट वाली जनरेशन है इंडस्ट्री की, वो सोच रहे कि हम थोड़े बहुत मूवीज ही बना लेते हैं. आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. आई मीन या राइट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरात के साथ यहाँ पर मस्ती का मंत्र चल रहा है. क्या ही चल रहा है, बट ऑल्सो मूवी मार्केट में क्या चल रहा है. मतलब अभी तो ये वाला ट्रेंड शुरू हुआ भी नहीं है, बस बातें ही शुरू हुई है कि ऐसा लग रहा है everybody has started thinking on those lines only कि हो सकता है that this genre is the next to go type of genre. Well, हमारा जो रंगीला रणवीर सिंह है, he is going on a sabbatical again very very soon because वो paternity leave पे जाने वाले हैं अपने दूसरे baby को welcome करने के लिए. Very good thing, right? But उन्होंने अपना next project जो है वो already announce कर रखा है. प्रलय नाम का project है. It's a very first आई थिंक इंडियन सिनेमा में वेरी फर्स्ट जॉम्बी लेड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है. अभी हुआ नहीं है, दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ जॉम्बी मूवीज एनी वेज, बट देन एनीथिंग न्यू ऑफकोर्स सारी चीजें खुले दिल से वेलकम करनी चाहिए. आप पता कुछ ऐसा लग रहा है कि अहमद खान यानी कोरियोग्राफर नाउ टर्न्ड डायरेक्टर, ही हैज ऑफिशियली कन्फर्म्ड अपनी अगली फिल्म विद टाइगर श्रॉफ एंड शनाया कपूर एंड इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय फिरोज नादिया द्वाला. फिल्म डेफिनेटली पाइपलाइन में है, फोटोशूट वगैरह जो है बिल्कुल अपेरेंटली हो गई है. या बाकी कास्ट जो है वो लॉक इन करना बस रह गया है. इट इज गोइंग टू बी अ मल्टी स्टारर एंसेंबल कास्ट वाला फिल्म, बट इट इज गोइंग टू बी अ जॉम्बी कॉमेडी. जॉम्बी कॉमेडी, पहले सर हमें जॉम्बी तो देखने दो, आप हमें एक और जॉनर इंट्रोड्यूस करा रहे हो जॉम्बी कॉमेडी में. सर एक ट्रेंड जो कि अभी शुरू भी नहीं हुआ है, एवरीबडी इज काइंड ऑफ लाइनिंग अप आफ्टर दैट कि जॉम्बी इज द थिंग टू गो. वेल आई डोंट नो, हाउ हैव यू सीन एनी जॉम्बी मूवीज? पीपल टेल मी, डू यू रियली लाइक दोस काइंड? आई नो पीपल दैट हु रियली लाइक दैट दोस काइंड ऑफ मूवीज एंड अपेरेंटली दे से दैट उसमें भी काफी लेवल्स होते हैं जो आप देख सकते हैं, कितना हैंडल कर सकते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. आई हैव नेवर सीन वन, सो आई हैव नो क्लू अबाउट इट, बट डेफिनेटली इंडियन सिनेमा में ये सारी चीजें अब सोची जा रही हैं एंड बहुत जल्द हमारे सामने आ भी जाएंगे. सो लेट्स वेट, वॉट काइंड ऑफ मैसेकर are we waiting for? I think the Gaana up next, definitely from the movie Alpha. Good morning.

0: We are Radio Mosti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: not your life. Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale.
1: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा.
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. अंतर आपके साथ यहाँ पे चल रहा है. गुड मॉर्निंग मस्ती का मंत्रा. इट्स अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग. आप हो, मैं हूँ, तो बस बात तो ब्यूटीफुल ऐसे ही बन जाती है. और मैं जो बात करने वाली हूँ उसके बाद तो और भी ज्यादा चीजें हसीन लगने लगेगी. यस अगेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रैवल, क्योंकि अगर शॉपिंग करते करते ट्रैवल करने का मौका मिल जाए तब तो और भी ज्यादा. देखिए जहां शॉपिंग करने जाएंगे वहां तक तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा, बट वहां जाकर आपको एंट्री भी फ्री मिल जाए, है ना, बहुत सारी शॉपिंग भी करने को मिल जाए. उसी के साथ साथ यू स्टैंड अ चांस टू विन यू नो टिकट्स टू अमेजिंग डेस्टिनेशंस लाइक गुआंगझो, लाइक बैंकॉक. आई मीन व्हाई नॉट, राइट? यस सिंगापुर. इफ शॉपिंग एंड फूड एंड एंटरटेनमेंट एंड फैमिली टाइम हैड वन एड्रेस, तो फिर वो होगा 42nd एडिशन ऑफ Zaxxalon इंडिया द फैमिली एक्सपो, द आदि डिस्काउंट सेल आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज हैपनिंग फ्रॉम 16th टू 19th ऑफ जुलाई, हॉल 5A सिंगापुर एक्सपो में सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक. एंड यस द एंट्री इज एब्सोल्यूटली फ्री. सी इट्स आदि स्पेशल डिस्काउंट सेल, दे डू इट like every single year. So expect amazing deals, fashion mein, jewelry mein, home essentials mein, lifestyle products mein. For all the food lovers jo hai, there are amazing and delicious food stalls, live performances hai, cultural programs and competitions hai. Pura family entertainment packed under one roof. And exciting part, every day two lucky visitors can win tickets to dream destinations, jaise ki maine kaha Langkawi ho gaya, Ho Chi Minh City ho gaya. Registration फ्री है, वहां पे जाए, इन सब चीजों का मजा उठाए. कैलेंडर जो है निकालिए अपना फोन का, उधर ब्लॉक कर लीजिए कि जाना तो है, एक बार चेकआउट तो करना ही करना है. सो शॉप मोर, सेव मोर, ईट मोर, एंजॉय मोर, एंड हु नोस यू माइट इवन फ्लाई टू योर नेक्स्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन. एंड ऑल थैंक्स टू Zaxxalon इंडिया द फैमिली एक्सपो आदि डिस्काउंट सेल. बोलना मत.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live pe. That's right, आप सुन रहे हैं मस्ती का मंत्रा। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, एंड मैं हूँ अंतरा आपके साथ। 9 बजे के उस पार हम लोग बातें करते करते जो है पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे से जो है ये लड़की आई हुई है और ये लड़की जो है शाम को भी आएगी, बट आज कुछ खास कार्यक्रम है हमारे पास। अभी अभी जो है सलमा ने ऐसा इतना, मतलब आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ईच वन ऑफ यू हैव दैट वन साइड। सी, हमारे जो रूटीन जिंदगी है वो तो चलती ही रहती है एंड उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है। वी जस्ट हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, बट देयर इज दैट वन साइड ऑफ आवर्स जो है बीच बीच में ऐसे जो कूद कूद के बाहर आता है। सो सलमा हैज दिस अर्ज किया है साइड जो उन्होंने मुझे दिखाया, एंड शी सेंट मी दिस अमेजिंग यू नो शायरी की चार लाइनें पढ़ के मेरा तो दिमाग ही, मैंने कहा वाह क्या बात कही है। लाइक ऑफ कोर्स कदरदान भी होने चाहिए ना जब आप कोई अच्छी बात कहे, तो मैं आई एम दैट कदरदान। आई लव व्हेन पीपल राइट वेल एंड यू नो कोई बहुत अच्छी चीज बहुत अच्छी तरीके से भी बोल जाते हैं तो मुझे बड़ा ही ज्यादा पसंद है। सो दिस इवनिंग मस्ती AVI यानी कि हमारा ऑडियो विजुअल इंटरैक्टिव, जी हाँ, स्क्रीन पे आएंगे, लेकिन सिर्फ मैं नहीं आऊंगी, मेरे साथ जो है हंसाने और गुदगुदाने। आई वॉज वेरी वेरी क्यूरियस दैट जब ये जो हास्य कवि होते हैं वो किस तरह से क्या क्या कैसे ये सारी चीजें कर लेते हैं, वॉट ऑल गोज बिहाइंड इट एंड एवरीथिंग। सो दिनेश बावरा जी जो है उनके साथ मेरी आज शाम को बात होने वाली है मस्ती AVI पर 6 PM ऑनवर्ड्स। शाम को बिल्कुल आप हमें ज्वाइन करें, और आपने भी 3-4 अर्ज किया है जो है, जैसे मैं सलमा को भी बोल रही थी, बिल्कुल वहां पे कमेंट सेक्शन में डालें और बताएं, और हमें भी फ्लेक्स करने का थोड़ा सा मौका दे, दैट हमारे लिसनर्स भी कम नहीं है दिनेश जी। वैसे आप मेरी शायरी तो जानते ही हो, मतलब मैंने अपनी वहां पे प्रेजेंट करनी शुरू कर दी तो फिर आई थिंक I am still in two minds whether I should go for it or not, but then yeah, after all it's haas kabhi, hasana hi to hai, itni buri hogi ki hansi aa jayegi, is cheez ka confidence mujhe kafi hai apne paas, but well it is going to be a really really a good you know conversation this evening with haas kabhi Dinesh Bavra ji, so definitely 6 PM onwards tune in, and baki to of course aaj Tuesday sham hai to dear masti to aayega hi aayega, two very contrasting things, but then It is nice, है ना? कभी कभी कोई कोई दिन में बहुत अलग मूड्स हो तो वो भी काफी एक यूनिक सी चीज बन जाती है, नहीं? I find it extremely interesting, at least for today, है ना? बाकी कल का कल देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आज शाम को मिलते हैं 6 बजे मस्ती AVI पर, बिल्कुल देखना नहीं भूलना, ओके? याद रखोगे ना? All right, good job.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
4: हाँ जी, हाँ जी, एक और बच्चा आने वाला है मार्केट में। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्र, एंड इट्स बीन क्वाइट अ व्हाइल। ठीक है, हमारे इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी टाइम से हम सिर्फ मूवीज की, जो भी थोड़ी बहुत मूवीज जो अभी रिलीज हो रही है, बन रही है, आ रही है, आने वाली मूवीज की बात कर रहे हैं। बट इट्स बीन क्वाइट अ व्हाइल दैट वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट कि कोई एक्टर जो है उसका डेब्यू हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। बट वेल, I have some scoop over there. भाई एक तरफ जो है, see, गोविंदा दिख रहे हैं बट उतना नहीं दिख रहे हैं। आई थिंक सुनीता जी ज्यादा दिख रही है मोर देन गोविंदा, बट शी क्लेम्स दैट थिंग राइट, एंड शी सेज दैट भाई वो जो जब मुझे वो सब चीजें करनी थी बीवी वाली वो मैंने की, अभी मेरा वक्त है एंड आई विल डू व्हाटएवर आई वांट टू डू एंड आई व्हाटएवर आई डू इट फॉर माई किड्स। वेल, गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ही इज ऑल सेट टू मेक हिज बॉलीवुड का डेब्यू। एकता कपूर के बैनर में बिल्कुल उनको लॉन्च किया जा रहा है एंड ऑफ कोर्स ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है हमारे गोविंदा ऑलरेडी दे चुके हैं। ही प्रेज्ड अपने बेटे के स्किल्स इन एक्टिंग एंड डांसिंग एंड एक्शन एंड सेइंग दैट आई बिलीव ही विल इमर्ज एज अ बेटर एक्टर देन मी। सी, वो तो ऑब्वियसली वक्त बताएगा दैट जब यशवर्धन को लॉन्च करेंगे, उनका डेब्यू होगा, काफी कुछ वो गोविंदा जैसे दिखते हैं, काफी कुछ जो है उनका चलने का एंड डांसिंग स्टाइल ऑल्सो जो है उनका ऑफकोर्स गोविंदा इंस्पायर्ड है। बट वी हैव हैड पीपल हु आर लाइक दैट, क्योंकि एक हद तक वरुण धवन को भी उस कैटेगरी में डाला जाता है राइट, कि जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं और इस तरह के थोड़े से कॉमेडी रोल्स करते हैं, ही गिव्स दैट गोविंदा काइंड ऑफ वाइब्स ओवर देयर। सो वेल, देखते हैं कि किस तरह से, एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है ये, क्योंकि जब भी कोई भी नेपो किड आता है तो उसको सबसे पहले ही जो है उस कंपैरिजन के ग्राउंड पे डाल दिया जाता है कि डैडी जैसा तो नहीं आ रहा, डैडी जैसा कैसा होगा, अपने जैसा होगा ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। बट वेल, टॉकिंग अबाउट गोविंदा ऑल्सो, ही हैड हिज, गोविंदा वॉज अ जॉनरा इन इटसेल्फ। जब वो उनका वक्त चल रहा था 90s के दौरान में, जब उनके बैक टू बैक जो है हिट्स आते हुए जा रहे थे, भाई वो बंदा अलग था, उसने अपनी अलग जगह बनाई हुई थी, वो खुद में ही जॉनरा था और उनके जैसा और उनको मैच करने के लिए भी, इनफैक्ट हीरोइंस भी ऐसे इस तरह से चूज की जाती थी उस टाइम पे जो गोविंदा का एनर्जी लेवल मैच कर पाए, बिकॉज नॉट एवरीबडी कुड डू इट। ही जस्ट वॉज अमेजिंग राइट, क्या डांसर, क्या मतलब, आज भी कोई ऊपर येलो टी शर्ट और नीचे ऑरेंज कलर का पैंट पहन के आ जा रहे, मतलब गोविंदा जैसा स्टाइल है, छूटता ही निकलता है, बड़ा एकदम फुल गोविंदा स्टाइल में तुम आ गए हो। व्हाई? बिकॉज दैट वाज हिम। डूड, बहुत बहुत ही मुश्किल होने वाला है ये, बट देन कंप्लीटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यार वेलकम करना चाहिए हमेशा हर किसी को।

0: रेडियो मस्ती 947 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: इतनी सी ये दुनिया और उसी में पता नहीं क्या सब कुछ होता रहता है. एंड व्हेन आई सॉ दिस ओ माय गॉड आई वाज लाइक रियली अभी भी ये सब चल रहा है. बट डेफिनेटली चलता तो रहता ही है. वेट लेट मी टेल यू, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ है यहाँ पर और चल रहा है मस्ती का मंत्रा. यू रिमेम्बर देयर वाज दिस न्यूज जहां पर आई थिंक इंडिया से ही ये खबर आई थी कि किसी तो मंदिर में किसी आइडल के पास में से पानी गिर रहा था एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड ड्रिंकिंग दैट पानी सेइंग कि भाई ये भगवान का प्रसाद एंड एवरीबॉडी वाज लाइक ये वहां से आ रहा है तो ये कुछ तो चमत्कार हो गया है. एंड इवेंचुअली इट वाज कि कहीं तो किसी एसी का पानी जो है वो बिल्कुल लीक कर रहा था एंड उसका वो पानी वहां से आ रहा था एंड एवरीबॉडी वाज लाइक भगवान का प्रसाद. इट्स लाइक मोर ऑन द बिलीफ राइट कि मानो तो पत्थर नहीं मानो तो यू नो नहीं मानो तो पत्थर मानो तो भगवान, वैसा वाला सिचुएशन हो जाता है. आगरा के ये भाई साहब ठीक है अब इट्स फनी बिकॉज इट ब्रिंग्स मी बैक टू माई चाइल्डहुड मेमोरीज एज वेल. यू रिमेम्बर पहले के फ्रिजेस हमारे रेफ्रिजरेटर्स जो हुआ करते थे एकदम शुरू में. यस आई एम टेकिंग यू बैक टू द 90s. तो उधर जब आप फ्रीजर जहाँ पे बर्फ जमती है वो वाला एक तो वो डोर बड़े आजकल तो बहुत फैंसी हो गए बट वो ओपन अगर आप करो तो उधर ना ऐसे जैसे पीक्स ऑफ स्नो इस तरह से आइस जमी हुई रहती थी. नीचे से ऐसे पीक्स बने होते थे, ऊपर से ऐसे पीक्स बने होते थे राइट. एंड इट यूज टू बी लाइक क्योंकि हमें टेम्परेचर सेट करना नहीं आता था एंड काफी सारी चीजें थी उस टाइम पे. वेल बात कुछ ऐसी हो गई कि ये भाई साहब जो है इन्होंने ऐसा ही पीक जो है अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर देखा और सबको ये कहा और क्लेम किया कि अमरनाथ का शिवलिंग जो मेल्ट कर गया है वो हमारे रेफ्रिजरेटर में जो है उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया है, यहाँ पे वो दिख रहा है. देर आर पीपल हु आर कमिंग एंड प्रेइंग एंड दक्षिणा देके जा रहे हैं. वो फ्रिज का दरवाजा खोल के, फ्रीजर का दरवाजा खोल के जो है वो एक पीक जो बना हुआ है एंड द पर्सन हु इज कमिंग एंड प्रेइंग वो कह रहा है अरे हाँ हाँ मुझे ना यहाँ पे वो भी दिख रहा है, यहाँ पे वो जो वैसा जो होता है ना शिवलिंग में, ये देखो ना इधर से थोड़ा सा खड़े होकर देखोगे तो तुमको दिख जाएगा. आई हैव नथिंग टू से अबाउट दिस ओके बट दिस इज वॉट इज हैपनिंग. Yeah, good morning.

0: एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: गेट अप एंड डांस, फिर डांस करते करते यहाँ से बाहर निकल जाती हूँ। यही करना सही लग रहा है फिलहाल। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती का मंत्रा चल रहा था अंतरा के साथ। सुबह 7 बजे से बिल्कुल अंतरा आपके साथ ही, यहाँ पर बता बजने वाले हैं 10, विच मीन्स दैट इट्स टाइम फॉर अ घंटे का म्यूजिक कैफे वाला ब्रेक। एंड देन ऑफ कोर्स हमारी आरजन ऊपर विल बी हियर। मस्ती मॉर्निंग्स आप उनके साथ एंजॉय करिएगा, एंड उसके बाद शाम को ऑफ कोर्स हमारा अनदर amazing episode of Dear Masti Dil Se. For that, you can of course tune in 5 PM onwards. Lekin usi ke saath saath a quick reminder that aaj shaam ko Masti AVI par aapki antra bilkul hazir ho jayegi with the most amazing Hasi Kavi Dinesh Bavra ji. Yes, we will have really really good time, so make sure that aap hame bilkul dekhen 6 baje Masti AVI par. Theek hai, tab hogi aapse mulaqat. Lekin filhal ke liye mujhe dijiye ijazat. You have a fantastic day ahead, and yeah, have a productive day ahead. I have a very efficient day. मतलब ऐसे मक्खन मलाई के जैसे निकले पूरा दिन. Yes, कभी कभी ऐसे भी विश कर देना चाहिए. You never know कौन सी बात कब सच हो जाए. नहीं तो कुछ अच्छा हमेशा बोलते रहना चाहिए. इसी थॉट के साथ और इसी बात के साथ, bye bye, take care and have a great day.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: Check the convictor, don't

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
3: आई लव यू रसना,
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: नाचने का मन है
5: मेरा भी आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस,
6: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh
3: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली, बिकॉज सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट. चेक आउट द एनकोर शो स्केड्यूल ऑन आवर एप मेन्यू.
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
4: अर्जुन आएंगे
3: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh me raho.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। यू नो वॉट, एक कैलकुलेशन मैंने बैठा ली है और वो ये कि अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है ना, तो उसका अंत बहुत अच्छा हो सकता है। हाय, मैं आरजे नूपुर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वंस अगेन मस्ती मॉर्निंग शो लेकर आ चुकी है। एंड पॉइंट इज कि शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन बिगड़ जाता है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब हाल ही की बात है, मैंने अपने दिन को ना थोड़ा सा नोटिस करना शुरू किया। फिर मुझे समझ में आया कि अगर मेरे दिन की शुरुआत यानी मॉर्निंग अच्छी नहीं निकलती है ना, तो मैं थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी यूज करके बाकी का जो दिन है ना बचा हुआ, उसको और ज्यादा प्रोडक्टिव करने में लग जाती हूँ कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब आगे कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और इस वजह से मेरा दिन और अच्छा जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि दिन की शुरुआत थोड़ी सी बैड बैड हो रही है ना, तो बाकी के दिन को गुड आप अपने हाथों से कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लगेगा और थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल लगेगी, बस। एनीवेज, गुड मॉर्निंग। मैं आज मस्ती मॉर्निंग शो पर वंस अगेन बड़ी सारी बातें पॉजिटिवली लेकर आई है और ऐसे गाने लेकर आई है कि आपका दिन तो बन ही जाएगा, नो डाउट।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
5: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
6: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
7: जीजी
6: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
7: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
2: आपकी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट थी और आपने उसे कलरफुल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। एनीवेज, हम सब की इमेजिनरी दुनिया तो ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो गई है, स्क्रीन्स कलरफुल हो चुकी हैं, लेकिन क्या रियल लाइफ हमारी कलरफुल हो पाई है? काश कितना आसान होता क्रेयॉन्स उठाकर अपनी खुद की लाइफ में रंग भर देते हम। हाय हाय हाय हाय, मैं तो सतरंगी रंग भर देती यार। जैसे ही बारिश होती है ना, मैं थोड़ी सी होप लेकर सिंगापुर में जीने लगती हूँ कि रेनबो दिखेगा दिखेगा। हाँ, बाय द वे, हमारी लाइफ का रेनबो का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे अंशुला कपूर, हाँ जी बोनी कपूर जी की जो बेटी हैं, उनकी शादी का रेनबो जरूर नजर आया है। एंड रिसेंटली उन्होंने अपनी वेडिंग डे पर कुछ वक्त पहले ही अपने ग्रे हेयर्स को ब्लैक करवाया। उनका जो हेयर डू हुआ, हेयर कट हुआ, समथिंग लाइक दैट, वो जो वीडियो सोशल मीडिया पे आया है उसको लोगों ने पॉजिटिवली नेगेटिवली हर तरह से यूज किया है। बाय द वे, अगर आपने अभी तक इनकी बेटी अंशुला कपूर का सोशल मीडिया नहीं देखा है तो वो बॉडी शेमिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हैं और वो जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं। और उन्होंने अपनी शादी में भी कोई बहुत ज्यादा टेंटरम नहीं दिए, नॉर्मल सी करी है, एक नॉर्मल पंजाबी वेडिंग होती है ना, ठीक उसी स्टाइल में किया है। तो खैर ठीक है, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग्स जो है वो चलती रहती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। आपको क्या करना है, आपको भी आगे चलते रहना है, आपको भी इग्नोर करते हुए चलना है। बिल्कुल रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalon India Aadi special discount sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalon India Aadi special discount sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. and entry free. Free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalon India Aadi special discount sale.
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: You know what? आप पूरी दुनिया घूम के आएंगे ना, तो सबसे ज्यादा सुकून आपको कहाँ मिलेगा? अपने घर पे। पूरी दुनिया का कुजीन भी टेस्ट करके आ जाएंगे ना, तो भी आपको सबसे ज्यादा खाने का सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा? अपने घर के दाल चावल में। हाँ, बिकॉज घर का खाना इज द हेल्दीएस्ट खाना जो हम सब कंसीडर करते हैं, राइट? तो चलो चलो चलो चलो चलो इसी हेल्दी पने को आगे बढ़ाते हैं। कैसे? हेल्दी ग्रोसरी से आपके घर के खाने की शुरुआत होती है, और वो कहाँ मिल सकती है? GGMartOnline.com, राइट? एंड रिसेंटली नीतू कपूर जी ने भी बोला है कि भाई मेरी डाइट की जो चॉइसेस है ना, वो हेल्दीएस्ट होती है क्योंकि मैं घर का खाना खाती हूँ। बाय द वे, सिंगापुर, अगर आप भी हेल्दी ग्रोसरी ढूंढ रहे हैं तो पहुंचिए GGMartOnline.com, जहाँ पे हेजलनट्स, पम्पकिन सीड्स और वो कहते हैं ना कैलिफोर्निया कैश्यूज, रोस्टेड एंड सॉल्टेड, हर तरह के प्रीमियम जो रेजन्स हैं, मखाना है, आपको एक रीजनेबल रेंज में मिल जाएंगे। और इनका एक सिग्नेचर प्रोडक्ट भी है, दैट इज गुलकंद, जो आपको 300 ग्राम $2.3 में मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं। सो डिटेल से ग्रोसरी चेकआउट करने के लिए, अपने कार्ट में ऐड करने के लिए GGMartOnline.com पर जाइए। और मैं आरजे पर जाती है थोड़ा, और घूम कर आती है बहुत सारे गाने लेकर। डोंट गो एनीवेयर, मस्ती मॉर्निंग शो।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: You know what? बहुत गर्मी में राहत की सांस क्या होती है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिलना, मैंगो लस्सी मिलना, कोई ऐसी आपको मतलब डिश मिलना जो अंदर आत्मा तक तृप्त कर दे, राइट? सो दिल का रास्ता पेट से ही होके जाता है, वो चाहे ठंडक का मामला क्यों ना हो। बाय द वे, सोशल मीडिया की गर्मी में ठंडक का मामला ये होता है कि आपकी पिक्चर्स का मिसयूज ना हो, राइट? सो मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि प्रीति जिंटा, जो कि अपनी एआई डीप फेक्स मॉब्ड इमेजेस एंड फेक वीडियोस से परेशान चल रही थी, इन्हें रिसेंटली हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल गया है। इनकी जो उलझलूल पिक्चर्स थी, फेक वीडियोस थी, इनकी आइडेंटिटी को खराब करने वाली जो चीजें थी, मीम्स थे, उन सबको हटवाने की पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है। तो ये सेलिब्रिटीज लाइफस्टाइल, चेरी ऑन द टॉप तो बाद में होती है, लेकिन पहले कांटों का सफर होता है। एनीवेज, इसी सफर में आगे बढ़ते हुए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ अमेजिंग वाले गाने, अमेजिंग बातें। सो डोंट गो एनीवेयर, एक मौका, एक चांस जो आपको हम दे रहे हैं कुछ कर दिखाने का, बताती हूँ इन अ शॉर्ट वाइल।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

अच्छी होगी। हाँ, और ऐसे मेंटालिटी वाले लोग ना मुझे बिल्कुल भी अच्छे डिसीजन मेकर नहीं लगते हैं। हाँ बाय द वे, मेरे साथ कभी आप लिटिल इंडिया या किसी मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे ना, तो मैं आपको ऐसी चीज दिलवाने की कोशिश करूंगी जो कम डॉलर्स में भी आपको एक्सपेंसिव डॉलर वाली फीलिंग दे। मतलब उसका अमाउंट ना देखने में लुक वाइज ज्यादा लगना चाहिए, राइट? एनीवेज, मैं आरजे मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। चलो ठीक है, अगर फिल्मों की बात करें तो उसमें तो अमाउंट मल्टीप्लाई होता जाता है, बजट आजकल बहुत बढ़ चुका है मूवीज का, राइट? सो रिसेंटली शाहरुख खान ये बिग नहीं, बिगर नहीं, बिगेस्ट मूवी बना रहे हैं यार। किंग इनकी जो अपकमिंग लाइंड अप मूवी है, सिद्धार्थ आनंद उसे डायरेक्ट कर रहे हैं। ये मूवी बनने में 150 से ज्यादा दिन लगे हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड जो है ना इसका शूट किया गया है। तो एक टेंटेटिव बजट मार्केट में पता है क्या फ्लोट हो रहा है, 450 करोड़ प्लस का खर्चा किया गया है। कैन यू इमेजिन? चलिए चलिए, खर्चे की बातें बहुत हो गई, ज्यादा बातें करूंगी तो क्या पता आपका और मेरा भी खर्चा हो जाए। फिलहाल मैं आरजे मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: You know what? आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, लेकिन विद्या बालन स्टार 2017 में एक मूवी आई थी तुम्हारी सुलू, और उसको देखकर आपको लगा कि आप भी हम आरजेस की तरह बहुत पटर पटर माइक के सामने बहुत आराम से बोल सकते हैं। देखो वो मूवी थी, असलियत नहीं। असलियत के लिए आपको थोड़ा हमारे संग उठना बैठना होगा, सीखना होगा, थोड़ा तैयारी शैयारी करनी होगी। एंड सिंगापुर में रहते रहते आपने बैक टू बेसिक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया ना, तब तो आप पीछे रह जाओगे रेस में, राइट? सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड देखिए, हमारे पास कई बार क्वेरीज आती रहती है कि सुनिए आपके जो आरजेस हैं हमें उनके साथ जरा ट्रेनिंग दिलवाइए। दैट्स व्हाई ऑन योर डिमांड मस्ती मीडिया नेटवर्क लेकर आ चुका है द आरजे अकेडमी। हाँ जी, आप भी ऑन ईयर जा सकते हैं रेडियो मस्ती के साथ, आपको भी चांस मिल सकता है। पर उससे पहले आप लर्न कीजिए, 12 आवर्स की ट्रेनिंग लीजिए जो कि बिगिनियर टू एडवांस रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, ताकि आप दूसरे कामों के साथ साथ बाकी चीजें भी देख ले, हाइब्रिड मोड ऑप्ट कर ले, है ना। और जो सिलेक्टेड ट्रेनीज होंगे ना, उन्हें लाइव शो करने का मौका भी मिलेगा। तो क्विकली एप्लीकेशन फॉर्म्स जानने के लिए, ब्रीफ जानने के लिए हमें ईमेल कीजिए info@radiomasti.com.sg। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: आप किसी को भी रुला सकते हैं, पर हंसाने के लिए मेहनत लगती है। अरे आसान नहीं है बिल्कुल। सो हेलो हाय, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और बहुत सारे एक्टर्स ने हमें हंसाने की कोशिश करी है, पर मुझे लगता है कि वन ऑफ द एक्टर अक्षय कुमार, इन्होंने एक मूवी से ये सिलसिला शुरू किया था। वो मूवी कौन सी है आपको गेस करनी है। हाँ जी, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर लेकर आ चुकी है गेस द डायलॉग। राइट, सो आपको डायलॉग पहचानना है और मुझे बताना है कौन सी मूवी से है। तो एक ऐसी मूवी जिसमें सब हंसते ही रहते हैं, वो चाहे परेश रावल हो, सुनील शेट्टी हो, अक्षय कुमार हो, या सामने बैठी ऑडियंस हो। राइट, तो डायलॉग सुनिए और गेस कीजिए मूवी का नाम।
4: वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने।
5: एक बात बता रहे, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना?
6: अच्छा, ये रखो कुटला का बगैर। नहीं, तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है?
4: स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल।
6: ये बाबूराव का स्टाइल है।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाय द वे, एक आपको अंदर की बात बताती हूँ। इस मूवी में जिस तरह से न्यूज़पेपर के ऊपर गरीबी में अक्षय, सुनील एंड परेश सोए थे ना, ठीक वैसे ही फिल्म की शूटिंग के दौरान शूट में भी वो सच में भी सोए थे। हाँ, और ये मूवी बन गई अपने आप में आइकॉनिक। अगर आपने नाम गेस कर लिया है तो रेडियो मसी 24/7 लाइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे DM करके बताओ मेरी जान। जल्दी जल्दी जल्दी आरजे नुपुर दिस साइड।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, सुन टकाटक
2: जोश में रहो।
0: दूर से देखा तो बुर्ज खलीफा नजर आ रहा था, पास जाके देखा तो लगा कि ठीक है एक नॉर्मल बिल्डिंग ही तो है, उसको बस इस तरह से इतना लंबा बना दिया गया है। हा? तो जब जो चीज हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, हो आते हैं तो वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। हा? सो मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग चोपड़ा को बताना चाहेगी कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो सुपर स्टार्स के संग काम करते हैं ना, उनके लिए ये चीज नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, शाहरुख आया है, शाहरुख चला गया है, ऋतिक रोशन आए हैं, ऋतिक रोशन चले गए हैं, समथिंग लाइक दैट। सो सोनाली कुलकर्णी, जिन्होंने कई बार जो है अपने ऋतिक रोशन के साथ काम किया है, उन्होंने बोला कि जब जब मैंने ऋतिक के साथ काम किया है मुझे कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि वो एक्सट्रीम हैंडसम लड़का है और मैं उसकी फैन हो गई हूँ। मतलब काम को हम लोग काम की तरह ही लेते हैं। चलो ठीक है भाई, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरा तरीका क्या है कि मैं आपसे बैक टू बैक बातें करूं बॉलीवुड इनसाइट्स। तो मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

लड़के शायद लड़कियों के साथ उतने लॉयल नहीं होते हैं जितनी अपने बाबर शॉप वाले भैया के साथ होते हैं, राइट? ऐसा मीम में तो हमने देखा है, लेकिन ऐसा रियलिटी में भी देखा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो सिर्फ एक ही हेयर ड्रेसर से, एक ही मेकअप पर्सन से अपना काम करवाते हैं, स्पेशली अमिताभ बच्चन जी। हाँ जी, सालों से उन्होंने एक ही इंसान से सारा काम करवाया है। भाई लॉयल्टी इस कैटेगरी में तो किसी और की नहीं हो सकती। हाँ, हाय, मैं आरजे नुपुर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपके साथ। एंड रिसेंटली थोड़ा सा अलग हट के अंदाज देखा गया सनी देओल जी का। हाँ जी, क्लीन शेव वगैरह में नजर आए, गोरे चिट्टे स्मार्ट नजर आ रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि भैया क्या है, कुछ अलग लग रहा है। तो उन्होंने बोला एक्टिंग खत्म हो चुकी है, मतलब ये थोड़ा सा अपना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कौन सा? रामायण मूवी में, राइट? और उसका जो शूट है वो खत्म हो चुका है, इसलिए इन्होंने अपना जो पुराना लुक है उसे ऑप्ट कर लिया है। तो ठीक है, धीरे धीरे से सेलिब्रिटीज बैक टू बैक मूवीज लाने का इंतजाम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो उन्हें बेस्ट एंड बेस्ट करके दिखाओ, और बस आपके लिए उस काम के हीरो आप ही हैं, और क्या। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
5: द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
2: जोश में रहो।
3: एक दिन मैं बहुत अमीर इंसान बनूंगा बनूंगी, ये है वो है ऐसा है वैसा है, ये सारी बातें ये सारी गणित हम बोल तो देते हैं, बस इसके बाद की जो कैलकुलेशन है ना कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है बड़ा इंसान बनने के लिए, ये कैलकुलेशन हम उतनी करके रखते नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बाय द वे आपके मन में भी होगा, जब आप सिंगापुर में अच्छा खासा मोटा अमाउंट कमा लोगे तो आप अपने एंसेस्टर्स का, तो आप अपने पूर्वजों का जो इंडिया में पुश्तैनी मकान है ना उसे आप खरीद लोगे। होता है यार, मतलब फीलिंग होती है मन में, राइट? तो डेफिनेटली शाहरुख खान के मन में भी फीलिंग थी, तो उन्होंने दिल्ली के एक पॉश एरिया में अच्छा खासा एक घर खरीद लिया है, दो फ्लोर्स खरीद लिए हैं। क्यों? क्योंकि वो वही जगह है, वो वही प्लेस है जहाँ इन्होंने अपने स्ट्रगलिंग डेज में शादी के बाद दिल्ली में अपनी वाइफ गौरी के साथ वक्त बिताया था। दैट्स वाई इन्होंने उन यादों को ताज़ा करने के लिए दिल्ली की एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है। क्या बात है, क्या बात है, बड़े लोग बड़ी बातें, चलती रहती है मेरी जान। चलिए ऑन दिस नोट चलते फिरते मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।
4: छत पक्षियां रंगा दी धूप बरसाती, सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया, दोनों को ही चाहतो न।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalan India Aadi Special Discount Sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalan India Aadi Special Discount Sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalan India Aadi Special Discount Sale. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning!
6: सिंगापुर में रहते रहते मैंने इतना समझ लिया है कि अगर आप एक डायरेक्शन में एमआरटी पकड़ के जा रहे हैं और वहां आपके चार काम नहीं हो रहे हैं तो इतना वर्थफुल नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यार आज हम एमआरटी से गए, टैक्सी से लौटे, फिर भी हमारे एक ही काम हो पाए, क्या फायदा ऐसे कामों का। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपुर आपको एक गुड न्यूज देना चाहेगी कि Zaxxalan India द फैमिली एक्सपो इज बैक। हाँ जी, इज कमिंग 16th, 17th, 18th and 19th ऑफ जुलाई को हॉल 5A सिंगापुर एक्सपो 10 a.m. टू 10 p.m. आपको पहुंचना है आदि स्पेशल डिस्काउंट सेल में। राइट, फैशन, फूड, ज्वेलरी, ऑक्शंस, कल्चरल प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिशंस, लाइफस्टाइल, लाइव परफॉर्मेंस, हाँ सब कुछ एक ही जगह और एंट्री एब्सोल्यूटली फ्री। एंड यू नो व्हाट, डेली आपके लिए लकी प्राइजेस निकल कर आने वाले हैं। और 16th and 17th जुलाई की बात करूं तो कैश बैक ऑफर्स 48 आवर्स के लिए रहने वाला है। कैरम कॉम्पिटिशन होने वाला है शाम को 5 बजे, 3D रंगोली कॉम्पिटिशन, स्पेशल डिनर, इवन आप कह सकते हैं चेस कॉम्पिटिशन, बैचलर कुकिंग कॉम्पिटिशन भी होने वाला है। और जो लकी विजेता होंगे उन्हें इंटरनेशनल ट्रिप पर भी भेजने वाले हैं। तो आपको तो भैया हर तरफ से फायदा होने वाला है, क्विकली पहुंचिए 16, 17, 18 और 19 जुलाई को। कहां? हॉल 5A सिंगापुर एक्सपो 10 a.m. टू 10 p.m. Zaxxalan India द फैमिली एक्सपो। आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Mr. Sexy.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। एक ऐसी मूवी जिसमें संजय दत्त भी दिखाई देने वाले थे, लेकिन उनकी कोर्ट कचहरी की डेट्स बहुत ज्यादा निकल कर आ रही थी, जिसके चलते उन्होंने मूवी स्किप कर दी और वो मूवी बन गई आइकॉनिक। सो हेलो, हाय, मैं आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अगर मैं बात करूं आज के सवाल की, गेस द डायलॉग की, कि भाई थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक डायलॉग सुना कर पूछा था कि मूवी का नाम बताओ, तो मेरे पास बहुत सारे सही जवाब आ चुके हैं। तो डायलॉग क्या था सुनाती हूँ।
2: वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना ये कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने।
3: एक बात बता रहे, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना?
4: अच्छा, ये रखो कुटला का बगैर। नहीं, नहीं तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है?
2: स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल।
4: ये बाबूराव का स्टाइल है।
1: बिल्कुल। तो ये डायलॉग था किससे? हेरा फेरी मूवी से। एंड यू नो व्हाट, इस मूवी में परेश रावल तो आइकॉनिक है, लेकिन जो अक्षय कुमार का हंसाने वाला कॉमिक टाइमिंग वाला किरदार है ना, वो यहीं से निकल कर आया था, जिसके बाद डायरेक्टर्स ने उनकी कॉमिक टाइमिंग देखकर इन्हें मल्टीपल रोल्स ऑफर करने का सोचा था। सो डेफिनेटली ये मूवी आइकॉनिक थी, इसके एक्टर्स, इसकी टाइमिंग आइकॉनिक थी और ये एक हिस्ट्री बन गया और अब इस मूवी का तीसरा पार्ट लाइनअप किया जा रहा है। तो डेफिनेटली मेरे पास बहुत सारे सही जवाब फेसबुक पे आ चुके हैं। आप भी ऐसे ही सही जवाब डायलॉग पहचान कर मेरे साथ दे सकते हैं। पर फिलहाल के लिए मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: आरजे गया
1: एग्जिट पर
2: और गाने आ गए ट्यूटर पर।
0: Non-stop music, non-stop musty. Only on Musty Music Cafe.
3: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, ट्रेन से देखा था।
6: शशि वो मैनहट्टन है।
5: मैनहट्टन
7: मैन as me hat topi or mom what's tan in hindi
6: tan matlab wo dhoop ki chhap

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20.
2: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा.
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. Time to raise the bar. Ramma. Musti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style. Renuka. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें. समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन. योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा. थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे। की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
2: गाना चाहिए? आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
3: All is well.
2: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
2: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
1: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
2: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: நன்றி நமஸ்காரம்.
1: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.
2: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ट्यूटर पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: जन्म।
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
2: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
4: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
5: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
6: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस।

0: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hu.
6: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: कभी कभी लाइफ हमें आंसर्स नहीं देती, सिर्फ क्वेश्चंस देती है।
1: नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स। डियर मस्ती, दिल से।
0: क्या ये रिश्ता सही है? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या मेरी कुछ ख्वाहिशें सिर्फ ख्वाहिशें ही रह जाएंगी? और कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में कि हम खुद से पूछना भी भूल जाते हैं, मैं कैसा हूं या मैं कैसी हूं। अ वेरी गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? दिस इज रेणुका विद यू, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डियर मस्ती दिल से। ये शो जहां पर आपकी चिट्ठियां हमारी कॉन्वर्सेशंस बन बैठी हैं, योर क्वेश्चंस बिकम समवन एल्सेस स्ट्रेंथ, एंड वेयर वी रियलाइज दैट नो मैटर हाउ डिफरेंट आवर लाइव्स मे लुक, आवर इमोशंस आर ऑफन द सेम। आप जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्ते में हमने इतनी चिट्ठियां पढ़ी हैं फ्रॉम पीपल ऑफ एवरी एज, यंग लिसनर्स हु आर ट्राइंग टू फाइंड लव, पेरेंट्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन, प्रोफेशनल्स जो क्वेश्चन करते हैं अपना सक्सेस, और हम सब जो अपना घर मिस करते हैं, पीपल सर्चिंग फॉर पर्पस। और हर चिट्ठी दैट हैज रिमाइंडेड अस दैट नन ऑफ अस आर अलोन। आज भी हमारे पास बहुत से ऐसे ब्यूटिफुल से, ऑनेस्ट से लेटर्स, खैर ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं। देर आर मैसेजेस अबाउट लव, मनी, फैमिली, ड्रीम्स दैट स्टिल रिमेन अनफुलफिल्ड, रिलेशनशिप्स दैट नीड अंडरस्टैंडिंग, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट समटाइम्स मेक अस फॉरगेट आवरसेल्व्स। मे बी कहीं ना कहीं आज की कहानियों में यू विल हियर अ पार्ट ऑफ योर ओन। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्रस्टिंग अस विद योर हार्ट्स। कीप द लेटर्स कमिंग, कीप द मैसेजेस कमिंग, बिकॉज कभी कभी मैं कहती हूँ ना, रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको सबसे बेहतरीन समझ सकता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटा सा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करेंगे हमसे, इट डजंट जस्ट फाइंड एन आंसर, इट हेल्प्स थाउजेंड्स ऑफ साइलेंट लिसनर्स रियलाइज दैट दे आर नॉट अलोन। मैं रेणुका आपके साथ शुरू करते हैं डियर मस्ती दिल से। आफ्टर ऑल आपका और हमारा साथ भी बहुत गहरा हुआ। स्टे ट्यून्ड।

0: And it's time for our first letter of the evening. जी हाँ, यहाँ पर चिट्ठी मेरे ही जिम्मे आई है क्योंकि आज पहले से मेरी बारी है.
1: Dear Masti, दिल से. Because sometimes रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान,
0: और आज वो अनजाना इंसान शुरुआत में आपको बता रहा है कि ये चिट्ठी जो हम सुनने वाले हैं, इट्स अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. भाई किसी का कहना कुछ ऐसा है कि मैं पिछले 2 साल से, चलिए पढ़ते हैं, I've been in a long distance relationship for almost 2 years. And हम genuinely एक दूसरे से प्यार करते हैं. We speak every day, video call whenever we can, celebrate birthdays online, और a future भी plan करते हैं साथ में. But lately, things have started changing. कभी कभी messages short हो जाते हैं, कभी कभी calls postpone हो जाती हैं because of work. We both get busy and then small misunderstandings, बड़ी बड़ी arguments बन जाती हैं. The hardest part is when you're upset, you can't simply drive over, hug each other and sort it out. Instead, overthink करने लगते हैं हम. हम imagine करने लगते हैं चीजें and we wonder if the distance is slowly changing the relationship or changing the people in it. I keep asking myself, can love really survive distance? Or does every long distance relationship eventually reach an expiry date? यार ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मैंने पर्सनली कभी नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो लाता ही है. और ये गाना भी याद दिलाता है. सुने साथ साथ रेडियो मस्ती 24/7 पर, उसके बाद आकर जवाब देंगे. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो इश्यूज के साथ कैसे डील करते हैं, या एक डायरेक्शन देते हैं आपको इस ब्रेक के बाद. गुड इवनिंग.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

वेलकम बैक। रेडियो मसी 24/7 पर चल रहा है डियर मस्ती दिल से। जी बिल्कुल, और आप हैं रेणुका के साथ। भाई थोड़ी देर पहले जो सवाल आया था यहाँ पर, दैट वाज अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड धीरे धीरे कैसे स्ट्रेस इन रिलेशनशिप्स में आ जाता है एंड व्हाट रियली शुड वन डू। तो वेल, आपको मैं यही कहना चाहूँगी, एंड आई डोंट नो वेदर यू नो द जेंडर ऑफ हु इज राइटिंग टू मी राइट नाउ, क्योंकि ये ईमेल है एंड इट्स ऑब्वियसली नॉट सेइंग अ नेम। वैसे भी हम नाम नहीं बताते हैं, सो जस्ट टू लेट यू नो, इवन इफ यू राइट टू अस एंड वी नो हु यू आर, नोबडी एल्स विल नो। It has to be anonymous. So, okay, आगे बढ़ते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए। पता है क्या कहते हैं, बहुत हम लोग सुनते हैं हमेशा कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ना, इट ऑल्सो मेक्स द माइंड ओवर थिंक। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आर नॉट डिफिकल्ट बिकॉज उसके बीच में किलोमीटर्स, माइल्स, ये सब आता है, बट ज़्यादा इसलिए बिकॉज ऑफ अनसर्टनटी। आप एक दूसरे का एक्सप्रेशन नहीं देख सकते रोज़ रोज़। अब तो खैर वीडियो कॉल से फिर भी बेटर हो गया, लेकिन बॉडी लैंग्वेज तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। साथ में आई एम बिजी जब कोई कहे तो ऐसा लगता है जैसे आई एम लूजिंग इंटरेस्ट, लिखने का मन है उस इंसान का। हम वैसे ही पढ़ते हैं, हम वैसे भी हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव बातों पर पहले जाता है और पॉजिटिव बाद में सोचता है। सो हियर समथिंग आई हैव लर्नड, कोई भी रिलेशनशिप ना सिर्फ प्यार पे सर्वाइव नहीं करता, नॉट इवन बिटवीन दोज पीपल जो एक ही घर में रहते हैं। रिलेशनशिप्स हमेशा ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और एफर्ट पर सर्वाइव करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक शेयर्ड डेस्टिनेशन बहुत ज़रूरी है ऐसे वाले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। आप मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए और अपने आप से ये पूछिए, आर वी सिंपली वेटिंग और आर वी बिल्डिंग टुवर्ड्स समथिंग। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस आइडियली शुड बी अ फेज, नॉट अ परमानेंट लाइफस्टाइल। देयर शुड बी अ प्लान, एक टाइमलाइन होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए जो आप दोनों का है, और इसीलिए धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सब अकेले कर रहे हैं, हमेशा पहले आप फ़ोन करते हैं, हमेशा आप ही एडजस्ट करते हैं, हमेशा आप ही होप करते हैं कि आएगा फ़ोन, देन इट्स टाइम फॉर अ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, डिस्टेंस के बारे में नहीं, कमिटमेंट के बारे में। क्योंकि सच्चा प्यार जो है ना, इट्स नॉट मेजर्ड बाय हाउ मेनी किलोमीटर्स सेपरेट यू, इट्स मेजर्ड बाय वेदर बोथ ऑफ यू आर स्टिल चूजिंग ईच अदर, इवन व्हेन लाइफ मेक्स इट डिफिकल्ट। तो बस सोचिए मत, बात कीजिए, सोचिए ये कि क्या मैं ही एफर्ट कर रहा हूँ या दूसरा इंसान भी कुछ कर रहा है। गाना सुने, इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक कमिंग फ्रॉम छिछोरे, इट सेज खैरियत। एक बार लिरिक्स सुनिएगा, बहुत मजा आएगा।

जब करने बैठते हैं तो बातें और निकलती जाती हैं और बातें आगे बढ़ती जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो छोटा सा फुल स्टॉप लगाना ही पड़ता है। सो हेलो हाय डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। आपकी और हमारी बातों में तो कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा, मतलब हम आरजेज आपसे बातें करते जाएं बातें कम पड़ जाती है। लेकिन अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। किसी ने मुझे लेटर भेजा है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं एक रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ और मैंने किसी को डेट करना पिछले 6 महीने पहले शुरू किया था, एंड नाउ वी आर कमिटेड टू ईच अदर, बट हम कभी भी ना फाइनेंशियल चीजों पे डिस्कशन नहीं करते। मतलब मन में एक सवाल अभी भी है कि वो क्या अमाउंट अर्न कर रहे हैं और क्या एक डिस्कशन होता है, इसे इनिशिएट कैसे करें। एनीवेज, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है उनको मैं बता दूं कि जब बात फाइनेंस की आती है ना तो बड़े बड़े रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हाँ अच्छा सुनिए, आप ना ऐसा करो, उनका लिविंग स्टाइल जो है और उनका आपकी तरफ जो एक नेचर है खर्च करने का, उसे ऑब्जर्व करना शुरू करो, ठीक है? फिर बाय द टाइम चलते फिरते उनसे एक डेयर वाला क्वेश्चन होता है ना, डेयर वाला, राइट, कि मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब तुम्हें देना ही देना है, फिर बदले में तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मैं दूंगी। हाँ तो ऐसा एक छोटा सा राउंड खेलो और उसमें कुछ एक्स एक्स एक्स अमाउंट वाला जो क्वेश्चन है ना वो इनडायरेक्टली पूछ लो, अदरवाइज एग्जैक्ट फिगर जान के भी कुछ नहीं मिलना है। सबसे ज्यादा एक बड़ा फिगर होना चाहिए हैप्पीनेस का, अगर वो है तो बस दैट्स इट।

0: डेफिनेटली गानों का फिगर हमारे संग बढ़ाइए. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुबराव के साथ डियर मस्ती दिल से शो.
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

It takes a village to raise a child. ये line आपने काफी सुनी होगी and it is very true as well. ये पता करेंगे अभी. Welcome back Radio Masti 24/7 Live पर आप सुन रहे हैं Dear Masti दिल से. Yes, हमारा बहुत ही खास शो है ये जहाँ पर आपके दिल की बात हमारे दिल के दिल तक पहुँचती है और हम उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरफ से एक पर्सपेक्टिव जो है बिल्कुल आपके सामने रखते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं इस अगली चिट्ठी की ओर और आंत्रा के पास जो ये चिट्ठी आई है वो कहती है दैट डियर मस्ती It takes a village to raise a child, but it feels like I am the whole village for my 2-year-old. I am exhausted physically and emotionally. Maybe because I have always done everything myself, I now have my own way of doing things. Whenever I ask my husband for help, he says I nag too much and give too many instructions. I honestly don't know what to do anymore. आपके वर्ड्स में से जो है बिल्कुल आई कैन फील द फ्रस्ट्रेशन टिल हियर. सो माय डियर लिसनर, सबसे पहले तो लेट मी से समथिंग. आई एम सो ग्लैड दैट यू रोट दिस. आई ऑलवेज से राइटिंग हेल्प्स. ओके, इट एट लीस्ट कम्स आउट ऑफ योर सिस्टम. दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड आई एम ग्लैड दैट यू डिड दैट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मॉम्स इस वक्त जो सुन रही हैं हमें वो भी यही सोच रही होंगी कि कहीं ना कहीं वो उनकी भी स्टोरी है. सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ. यू आर नॉट फेलिंग, यू आर जस्ट टायर्ड. और दोनों में काफ़ी फर्क होता है. जब हम बहुत दिनों तक हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद उठाते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे हम सिर्फ काम नहीं करते, हम उस काम का सिस्टम भी बना लेते हैं. कौन सी बॉटल किस शेल्फ पर रखी है, बेबी कैसे सोता है, किस फोन से खाना खाता है, कौन से लोरी उसको सुनानी पड़ती है, उसको काम डाउन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एवरीथिंग. और फिर जब कोई हमें हेल्प करने आता है तो नेचुरली हम उसको बताते हैं कि नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं वैसे. और पता है ये कंट्रोल फ्रीक होना नहीं है, ये एक्चुअली मेंटल लोड है. आपका दिमाग इतने सालों से हर छोटी बड़ी चीज का मैनेजर बना हुआ है कि उसे लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा. लेकिन अब जरा हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से भी आपके देखते हैं. हो सकता है वो जब भी आपकी हेल्प करने आते हो उन्हें सिर्फ करेक्शंस ही सुनाई देती हो कि ऐसे नहीं, ये गलत है, मैं ही कर लेती हूँ, तुम छोड़ दो, है ना. और धीरे धीरे उनके दिमाग में भी एक मैसेज चला जाता है कि मैं तो कुछ भी करूंगा तो गलत ही होगा, और फिर वो पीछे हटने लगते हैं. देखिए, यहाँ पे इस सिचुएशन में विलन कोई भी नहीं है. यहाँ दो लोग हैं जो दोनों थक गए हैं, बस दोनों की थकान अलग लैंग्वेज में बोल रही है. तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हेल्प मांगने की जगह आई थिंक यू शुड गिव द ओनरशिप टू अदर पर्सन. जैसे सैटरडे मॉर्निंग तुम ब्रेकफास्ट और बेबी दोनों हैंडल करोगे और मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी. और फिर सच में इंटरफेयर मत कीजिए, चाहे डायपर उल्टा पहना दिया जाए, चाहे कपड़े मैच नहीं करे, चाहे बेड टाइम स्टोरी 3 बार रिपीट हो जाए. क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए होते हैं, उन्हें अवेलेबल पेरेंट्स चाहिए होते हैं. और अगर पापा और बेबी अपना एक खुद का तरीका डेवलप करते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, करेक्ट. सो माय डियर लिसनर, कभी कभी पार्टनरशिप का मतलब सब कुछ 50-50 करना नहीं होता. कभी कभी पार्टनरशिप का मतलब होता है एक दूसरे को अपना तरीका ढूंढने देना. एंड यस, अपने आप से भी एक प्रॉमिस आप कर सकते हो, एंड इट इज जस्ट फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू टू डू इट. रोज सिर्फ 10 मिनट, दैट इज राइट, ओनली 10 मिनट्स. यू आर नॉट अ मॉम, नॉट अ वाइफ, यू आर जस्ट विथ योर सेल्फ. क्योंकि जिस इंसान का कप खुद खाली हो वो कितनी देर तक सबके कप्स भर पाएगा, सोच के देखना. होप दिस हेल्प्स. ये है डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां पर आपके दिल की बातें हम यहां पे आपके चिट्ठियों के जरिए पढ़ते हैं और हमारे दिल तक डेफिनेटली पहुंच जाती हैं। एंड होप दैट यू आर आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर पर्सपेक्टिव व्हेन वी गिव इट। सो वेल, अगली चिट्ठी की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। डियर मस्ती, एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव ने हमसे काफी बड़ा अमाउंट बोरो किया है, बोला लोन चुकाना है और बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। हमने भी बिना ज्यादा सोचे उनकी हेल्प कर दी, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि वो 5-स्टार होटल्स में जा रहे हैं, बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, अगर इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो ये सब कैसे हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है? वाओ, थैंक यू फॉर राइटिंग दिस लेटर, एंड जस्ट फ्रॉम द लेटर आई कैन फील दैट you know the amount of trust you all have on us to discuss these things. So my dear listener, sabse pehle to jo confusion aap feel kar rahe hain, that is very natural, kyunki padke to mujhe bhi aisa hi laga, kyunki hum jab kisi ki mushkil mein saath dene khade hote hain na, to it's just not about the money, it's the trust also we are putting in with that, right? aur jab baad mein kuch aisa dikhta hai ki us story se kuch match nahi kar raha hai, to sawal utna, doubt aana normal hai. लेकिन मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इन सभी के बीच में, एंड इट कम्स फ्रॉम अ वेरी माय खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आता है। सोशल मीडिया को पूरी कहानी मत मानिए, हो सकता है वो ट्रिप पहले से प्लान हो सकता है यू नो किसी और ने स्पॉन्सर किया हो, लाइक पहले कुछ ऐसा हो चुका हो सकता है बिजनेस क्लास का अपग्रेड मिला हो, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग दैट जस्ट डोंट ब्लाइंडली बिलीव व्हाट सोशल मीडिया शोस यू। हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो सच भी हो सकता है, पॉइंट ये है इस वक्त आपको पता नहीं है, और जब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो दिमाग अक्सर ब्लैंक्स को अजम्पशन से भर देता है। अब प्रैक्टिकल बात, अगर आपको पैसे वापस मिलने का टाइमलाइन क्लियर नहीं है तो उसके बारे में बात करना बिल्कुल गलत भी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि पैसे मांगना मतलब रिलेशनशिप को खराब करना, दैट इज नॉट ट्रू। रिस्पेक्टफुली क्लैरिटी मांगना और अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करना दो अलग अलग चीजें हैं। आप कह सकते हैं कि बस मुझे एक आइडिया चाहिए था कि रीपेमेंट का क्या प्लान है, ताकि हम भी अपने आगे की थोड़ी बहुत प्लानिंग कर पाए। इसमें ना गिल्ट है भाई, पैसा आपका ही है, राइट? कोई एक्यूजेशन नहीं है, बस क्लैरिटी है। और एक बात जो शायद फ्यूचर के लिए काम आए, अगर कभी किसी अपने को पैसे लेंड करे तो उतना ही अमाउंट दीजिए जिसके वापस ना आने से भी आपका घर और आपकी मेंटल पीस जो है वो ना हिले, क्योंकि पैसे का लॉस कभी कभी रिकवर हो जाता है, लेकिन वो जो ट्रस्ट का लॉस है वो रिकवर, दैट इज वन थिंग। सो माय डियर लिसनर, काइंड होना, काइंड रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन काइंडनेस के साथ बाउंड्रीज होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। दोनों साथ चल सकते हैं और शायद वही इमोशनली हेल्दी बैलेंस भी है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट? ये डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टे ट्यून्ड।

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GTMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GTMartOnline.com।
2: GTMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो भी हमारे आसपास से शुरू होता है, एंड सेम डिसकंफर्ट जोन भी हमारे ही अगल बगल से शुरू हो रहा होता है। तो सबसे पहले अपने सबसे नियरेस्ट एनवायरनमेंट को सही रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आपके साथ, एंड अभी मेरे हाथों में जिन्होंने लेटर भेजा हुआ है उन्होंने क्या लिखा है चलिए बताती हूँ। हाय डियर मस्ती, मैं वैसे तो लाइफ में एकदम सही चल रही हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज है जो मुझे अनॉय कर रही है, एंड दैट इज हमारे नेबर्स। हाँ जी, हमारे एक नए नेबर्स शिफ्ट हुए हैं जो कि बहुत ऑड टाइमिंग्स पे घर आ जाते हैं, एंड कई बार उनका ज़बरदस्ती हमारे घर में ऐसे एंटर होना, हमसे बातें करना, मुझे अंदर से एक अच्छी वाइब नहीं दे रहे हैं और मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। What should I do? So dear मस्ती दिल से शो पर आपने जो मैसेज भेजा है, मैं आपसे बोलूंगी अगर आपको सिक्स्थ सेंस आ रही है ना कि आपको उनसे बात नहीं करना है, दे आर नॉट गुड पीपल, तो आप सच में ब्लंटली चेहरे पर मना कर दीजिए कि हमें सोशलाइजिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, ठीक है? बिकॉज आप जैसे शुरुआत से रहेंगे ना और वैसे ही आगे तक रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। प्लस मेरा एक और ओपिनियन है कि क्या पता आपका ये वन साइडेड ओपिनियन हो कि आपके जो नेबर हैं वो अच्छे नहीं हैं, आप उन्हें थोड़ा सा जानिए, पहचानिए, बिकॉज वक्त बेवक्त जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अर्जेंटली ज़रूरत होगी ना, तो हो सकते हैं कि उस दिन वो आपको सबसे ज़्यादा काम आए, राइट? हाँ, तो दोनों तरह से सोचिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए।

0: डियर मस्ती दिल से शो पर गानों के बेहतरीन डिसीजन मेरे यानी आरजे नूपुर के साथ.
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalon India Aadi special discount sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalon India Aadi special discount sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalon India Aadi special discount sale. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Dear Masti Dil Se, यही चल रहा है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, और हम हैं आपके वो रेडियो वाले स्ट्रेंजर जरूर है लेकिन आपके दोस्त भी यहाँ पर है. यहाँ पे वी ओनली लिसन एंड वी जस्ट लिसन टू यू कम्प्लीटली एंड देन वी गिव आवर पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन व्हाट वी थिंक. अगर हम उस सिचुएशन में अपने आप को डाल दें तो क्या लगता है कि हम क्या करेंगे. एंड होप इट हेल्प्स, इट हैज हेल्प्ड. सो यस, अगली चिट्ठी पढ़े, चलिए पढ़ते हैं साथ साथ में. अगली चिट्ठी कहती है, डियर मस्ती, मेरी एक्स हेल्पर को मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड ने हायर किया है. मैं उस लेडी को पर्सनली इतना नहीं जानती लेकिन मेरी हेल्पर के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था. अब मेरी फ्रेंड मुझसे उसके बारे में पूछ रही है, हेल्पर के बारे में, आई थिंक सो. या मैं कंफ्यूज्ड हूँ, अगर मैं सच बता दूं तो शायद हेल्पर की ये नई जॉब चली जाए, और अगर कुछ ना कहूं तो अंदर से लगता है कि शायद मैं ठीक नहीं कर रही हूं. मैं करूं तो क्या करूं? वाओ, अगर मैं अपने आप को इस सिचुएशन में डालूं, व्हाट विल आई डू? ओके, सो माय डियर लिसनर, ये लेटर पढ़कर मुझे लगा कि ये हेल्पर के बारे में तो है ही है, बट इट्स अबाउट द कंसाइज एज वेल, राइट? कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जहां पे कोई ऑप्शन कम्प्लीटली राइट या कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं लगता. एक तरफ किसी का फ्यूचर होता है और दूसरी तरफ किसी और को अवेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बीच में खड़े होते हैं हम. दिल कहता है कि भाई सच बोल दो, दिमाग कहता है अगर मेरी वजह से उसकी जॉब चली गई तो फिर कहीं से आवाज आती है, वैसे भी मुझे क्या लेना देना. करेक्ट, देखा जाए तो हम सिर्फ एक सवाल से लड़ रहे होते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है. और मुझे लगता है कि हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरते जरूर हैं, ऑफिस में, फैमिली में, दोस्ती में, कभी किसी रिकमेंडेशन को लेकर, कभी किसी वार्निंग को लेकर, और हर बार जवाब इतना सिंपल नहीं होता है. तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती, लेट मी गिव इट अ थॉट. ओके, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं वापस आके आपको बताती हूँ कि मुझे क्या लगता है कि क्या क्या सही शायद इधर मेरे हिसाब से होना चाहिए. यह है डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. आई नो यू वॉन्ट टू नो, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल कम बैक.

वेलकम बैक डियर मस्ती दिल से चल रहा है और वीडियो मस्ती 24/7 लाइव मैं अंतरा आपके साथ। और अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अभी जो हमने लेटर पढ़ा क्विकली एक रीकैप देती हूँ। हमें लिखा किसी ने दैट उनकी एक्स हेल्पर को उनकी फ्रेंड की फ्रेंड ने हायर किया है, ठीक है। लिसनर का उस हेल्पर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। अब उनकी दोस्त जो है उनसे हेल्पर के बारे में फीडबैक मांग रही है। अगर वो सच बता देती है तो शायद उस हेल्पर की जॉब चली जाए, और अगर कुछ नहीं बोले तो उनको लग रहा है कि वो ऑनेस्टी नहीं दिखा पा रही है उतनी ज्यादा। सो उनका सवाल था कि क्या करूं मैं ऐसे सिचुएशन पे। सो माय डियर लिसनर, सबसे पहले मुझे लगता है सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी चाहिए, ऑनेस्ट होना और जजमेंटल होना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। जब किसी के बारे में हम फीडबैक हमें देना हो तो फैक्ट्स बताइए, कंक्लूजन्स नहीं, फैक्ट्स को प्रेजेंट करना जरूरी है। मान लीजिए आपका हेल्पर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा चैलेंजिंग था, टाइम मैनेजमेंट एंड कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है वो मैच नहीं हुई थी। हो सकता है तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये बात शेयर कर देनी चाहिए। सो आप ये नहीं कह रहे हो कि अरे उसको मत रखना या फिर वो बहुत बुरी है और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हर इंसान हर घर में एक जैसा परफॉर्म नहीं करता, राइट? कभी एनवायरमेंट अलग होता है, कभी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, कभी कम्युनिकेशन अलग होता है, और कभी सच में इंसान बदल भी जाता है। लेकिन अगर किसी ने स्पेसिफिकली आपसे ओपिनियन मांगा है तो सिर्फ डर से या फिर ये सोच के चुप रह जाना कि उसकी जॉब ना चली जाए, वो भी फेयर नहीं है, क्योंकि फिर आप अपनी फ्रेंड से एक इंफॉर्मेशन छुपा रहे हो जो उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ना हेल्पर को विलन बनाए ना खुद को जज बनाए, बस अपना एक्सपीरियंस आप कामली रिस्पेक्टफुली और बिना किसी एजेंडा के जो है वो शेयर करें। उसके बाद डिसीजन उनका है कि उनको क्या करना है, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज व्हाट सपोज टू हैपन, राइट? हम लाइफ में ना हर किसी के कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम सच कैसे बोलते हैं। सच अगर रिस्पेक्ट के साथ बोला जाए तो वो रिलेशनशिप तोड़ता नहीं है, ट्रस्ट बनाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी कि I am here also assuming that there are no really major red flags which you are talking about. If that is not the case, जहाँ पे it is like really big and you think that it is like very very essential, then I think the whole scenario changes over there. So I thought I had to mention like that. मेरे हिसाब से आपकी चिट्ठी के हिसाब से उतनी बड़ी मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगी और मैंने अपना पर्सपेक्टिव उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। So I hope this helps. Do write back to me and let me know whether I am right or not in thinking about the situation this way.

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: और अब फिर से मुझे याद किया है यहाँ पर किसी ने, दिस इज रेणुका विद यू, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है
4: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है,
3: और इस समय वो अनजाना इंसान खुद को भी रिलेट कर रहा है विद द लेटर दैट हैज कम टू मी। हाय रेणुका, पीपल ऑफन से दिस इज लाइफ, मुझे पता है वो सही है, एज वी ग्रो ओल्डर आवर पेरेंट्स ग्रो ओल्डर टू, लेकिन हम छोटी छोटी बातें नोट करने लगते हैं, उनके बाल सफ़ेद ज़्यादा हो जाते हैं, दे वॉक अ लिटल स्लोअर, दे फॉरगेट थिंग्स दे नेवर यूज टू, एंड सडनली एक थॉट आता है दिमाग में दैट एक दिन वो हमारे साथ नहीं होंगे, और यही थॉट आता है जब मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को देखती हूँ, द पीपल आई लव द मोस्ट। आई नो लाइफ हैज अ साइकिल, आई नो वी आर ऑल बोर्न वन डे एंड लीव वन डे, आई ट्राई टू बी स्पिरिचुअल, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे एक्सेप्ट करूँ, बट ऑनेस्टली इट्स मच ईजियर टू अंडरस्टैंड इट विद द माइंड दैन टू एक्सेप्ट इट विद द हार्ट। समटाइम्स मैं इतनी एंशियस हो जाती हूँ थिंकिंग अबाउट लूजिंग द पीपल आई लव दैट आई स्टॉप एंजॉइंग द मोमेंट्स आई हैव देम विद देम, आई हैव विद देम टुडे। हाउ डज वन डील विद दिस फियर? मतलब जिंदगी कैसी होती है ना कि इट्स नेवर इनफ, नेवर इनफ। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि अब मैं तैयार हूं मरने के लिए, आई मीन अनलेस ऑफ कोर्स वी गोइंग थ्रू डिप्रेशन, बट कभी भी कुछ भी इनफ नहीं होता। दोस्तों के साथ वक्त मिलता है तो हम कहते हैं यार अगले संडे ना फिर से मिलते हैं, जब घर वालों के साथ में प्यार से बातें हो रही होती हैं, वो मोमेंट्स बन रहे होते हैं, तो हम कहते हैं यार ये दिन कभी ना खत्म हो। माँ बाप के साथ में बैठते हैं, देखते हैं कि वो हमें पैम्पर करते हैं, बिल्कुल स्पॉइल करते हैं, और धीरे धीरे जब वो ओल्ड हो रहे होते हैं हम कहते हैं यार कहाँ जा रहे हो आप लोग, आप लोग क्यों वैसे नहीं हो जैसे होते थे। यही है जिंदगी। और ये जो चिट्ठी आई है ना अभी अभी, वो सच में एक फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन और योर सेल्फ गोइंग अवे फ्रॉम योर लव्ड वंस, ये एक फियर एंजाइटी बहुत बार हर इंसान के दिमाग में आती है। वैसे तो इस गाने ने कह दिया जो मुझे कहना है, पर छोटे से ब्रेक के बाद आकर इस बारे में बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है डियर मस्ती दिल से। नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स, आप ही की चिट्ठियों के साथ में। और जानते हैं कि इस ब्रेक से पहले एक चिट्ठी जो मैं पढ़ रही थी वाज अबाउट लूजिंग योर लव्ड वंस, या अपने बारे में कि भाई हम कल हो ना हो, ये वक्त जो है हमारे सब चाहने वालों के साथ में, विद द पीपल वी लव, आवर पेरेंट्स, यू नो द स्पाउस, द पार्टनर, द चिल्ड्रन, यार ये इतना प्यार होता है कि हमेशा दिमाग में गलत ख्याल आ जाते हैं कि पता नहीं ये कब खत्म हो जाए। Exactly, but I don't think आपकी चिट्ठी is about death, it is about love. क्योंकि क्या होता है कि हम जब जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उतना ही डर हमारा बढ़ जाता है for losing that person. And that's one of the greatest paradoxes of life. We know nothing lasts forever, फिर भी goodbye कितना दर्द देता है. Every wrinkle reminds us that time is moving. Every birthday reminds us that life is changing. लोग कहते हैं, don't think about it. लेकिन हमारा दिमाग वैसे काम नहीं करता. So maybe, instead of trying to stop that thought, we can change what we do with it. अगर वो thought आपको remind करता है कि आपके parents won't be here forever, then call them. आज ही, अभी. Sit with them a little longer. Ask them about their childhood. Record करो उनकी हंसी. Take more photographs. But सबसे ज्यादा जरूरी, make more memories. क्योंकि एक दिन, we won't wish we had worried more. We'll wish we had loved more. We will wish we had listened more. We'll wish that we had hugged them one extra time. None of us can stop time, but every one of us can decide कि हम कैसे time spend करेंगे जितना भी हमारे पास है, and maybe that's life's greatest lesson. डरो मत कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, but to make sure that until then it is beautifully lived. So आज सोने से पहले, जी हाँ, रात को call someone you love. Not because tomorrow is uncertain, but because today is a gift. और हाँ, gift मुझे भी दे दो, अच्छा लगता है.
1: तेरा मुझसे है पहले
0: कन, एंड हियर इज अ गिफ्ट फॉर पीपल हु लव रेट्रो.
1: नहीं दिल लुभाता,
0: और अ ब्यूटीफुल मीनिंगफुल गाना ना, चलो सुनते हैं साथ में, एंड स्माइल.

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

ऑनलाइन की दुनिया ना बिल्कुल पुराने हिंदी मुहावरे की तरह है, एंड दैट इज कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हाँ, तो डेफिनेटली मैं आरजे नुपुर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। एंड अगर हम अगले लेटर की बात करें जो मेरे हाथों में आ चुका है, उसमें लिखा हुआ है, हाय डियर मस्ती दिल से, हम डेटिंग साइट पर मिले एंड मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ इस तरह की रिलेशनशिप को लेकर, कि ठीक है डेटिंग साइट पर मिले तो क्या हुआ, दुनिया बहुत छोटी है, समथिंग लाइक दैट। बट इन पर्सन मैं उस शख्स से जब मिलती हूँ ना तो मुझे नेगेटिव फील होता है, बट जब मैसेजेस हो रहे थे और अपने कमिटमेंट स्टेज तक हम आ गए थे तब तक बातें मुझे ऑन मैसेज अच्छी लगी, वो फर्स्ट वाली मीटिंग अच्छी थी, लेकिन अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए। ओके, सो जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो ठीक नहीं लग रहा, ये आप एक कमिटमेंट देने से डर रहे हो इसलिए ठीक नहीं लग रहा, या फिर एक्चुअली में सामने वाले का नेचर ठीक नहीं लग रहा। बिकॉज अक्सर रिलेशनशिप में हमने देखा है कि जब हम शुरुआत में बातें करने लगते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हमें कमिट करना पड़ता है कि नहीं सिर्फ तुम ही हो और ये रिश्ता आप सेकेंड स्टेज पे थर्ड स्टेज पे जाने के लिए तैयार है, तो मन में नर्वसनेस आती है और हम अपने आप को उसके लिए रेडी नहीं कर पाते। तो पहले आप खुद से सवाल कीजिए, उसके बाद एक सही जवाब चुनिए।

वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो नहीं होता है वो तो डेफिनेटली अच्छे के लिए होता है। सो डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड अभी जो मेरे हाथों में लेटर आया है उसमें शायद कुछ ऐसा ही लिखा है। जिन्होंने लेटर भेजा है उन्होंने ये बोला है, हाय डियर मस्ती, एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन आपके संग शेयर कर रहा हूँ कि आज से कुछ साल पहले मेरे फादर गुजर गए थे और उनके जाने के साथ उनकी जो जॉब है वो मुझे मिल गई। एंड एक तरफ फादर के जाने का दुख था और दूसरी तरफ करियर में एक नया पड़ाव था। तो मैं बताऊंगा तो नहीं मैं कौन से डिपार्टमेंट से हूँ, बट मुझे जो लाइफ में करना था मैं वो नहीं कर पाया, और मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना ही करना है, बिकॉज इसके बिना शायद काम नहीं चलेगा। तो कभी ऑपोजिट डिसीजन लेने की हिम्मत करता हूँ तो ऐसा लगता है कि फादर की मेमोरीज को मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, आप मुझे ये बताइए, आप जिस प्रोफेशन में हैं आप उसके अलावा शायद अपने पैशन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। उस पैशन को जरूरी है आप 365 दिन जब जिए तभी उसमें मजा आए? हाँ, आप देखिए अपने पैशन को जिंदा करने के लिए या फिर आप अपनी लाइफ का जो मिसिंग पजल है ना उसे फिलअप करने की शुरुआत तो कीजिए। साइड बाय साइड उसके बारे में एक प्लान बनाइए, उसकी लर्निंग उसकी स्किल्स ग्रैब कीजिए। जब आपको लगे कि वो जो नाव है वो काफी स्ट्रांग बन चुकी है, उसके बाद किसी एक नाव पर चढ़ने का आप कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट लीजिए। ऐसे हड़बड़ाहट में बार बार ये सोचना कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, गलत के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं, लाइफ ने बहुत ही नेगेटिव आपको डाल दिया है, नहीं, शायद आपके सामने कोई और शख्स भी आपको दिख जाए जिसके पास बहुत कुछ नहीं है फिर भी वो लाइफ सर्वाइव कर रहा। ओके, सो चूज योर करियर, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा यहां पर आपके साथ, और बिल्कुल यहां पर अगली छुट्टी की तरफ बढ़ते हुए साथ साथ में अगली छुट्टी हमारी कहती है डियर मस्ती। लोग अक्सर कहते हैं कि ये तो सबके साथ होता है, बुरा वक्त है सब ठीक हो जाएगा, सहना तो पड़ता ही है। मैं समझना चाहता हूं कि क्या हमेशा सहना ही पड़ता है? हाउ मच डू यू बिलीव इन दिस? इंटरेस्टिंग। सो डियर लिसनर, सच कहूं मुझे लगता है हमारे खुद के कल्चर में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है कि सह लो बेटा, ये तो करना ही पड़ता है। नहीं, मैं बचपन से सुनती हुई आई हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा और सह लो। कई सिचुएशंस में तो ये शायद एडवाइस गलत भी नहीं होती, बट लाइफ में पेशेंस चाहिए, रेजिलियंस चाहिए। हर छोटी बात पर भाग जाना भी सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन यही एक बहुत जरूरी लाइन आती है दैट पेशेंस और सेल्फ नेग्लेक्ट एक जैसे चीज नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? डू यू फील द सेम वे दैट आई डू? एक्सेप्टेंस और सफरिंग भी एक चीज नहीं होती है। So, जो आप सह रहे हैं क्या उससे कुछ बेटर हो रहा है? That's what I keep asking myself. क्या इससे कुछ बेटर हो रहा है? अगर जवाब हाँ है, जैसे एक डिफिकल्ट फेज, कोई एग्जाम है, कोई सर्जरी है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, जिसका एंड नजर आ रहा है, तो कभी कभी सहना जो है वो ग्रोथ का हिस्सा होता है। लेकिन अगर आप रोज डिसरिस्पेक्ट सह रहे हैं, रोज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, रोज इमोशनली किसी चीज से जूझते हुए जा रहे हैं, और सिर्फ इसीलिए रुक गए हैं कि क्योंकि लोग कहते हैं सब सह लेते हैं, तो शायद वक्त आ गया है कि ये सवाल आप पूछ लें, मैं किस चीज को बचा रहा हूं और किसके बदले? क्योंकि हर पेन मीनिंगफुल नहीं होता, हर पेन हमें स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, राइट? कुछ पेन सिर्फ हमें अंदर से बड़ा ही कमजोर सा भी कर देता है। और दोनों का फर्क समझना, आई थिंक इट कम्स विद टाइम एंड मैच्योरिटी एज वेल। सो मैं पर्सनली सहने से ज्यादा समझने में आई बिलीव इन दैट। सिचुएशन को समझिए, फिर अपनी फीलिंग्स को समझिए, दैट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। फिर डिसाइड करिए कि क्या ये फेज है या ये पैटर्न है, क्योंकि फेज बीत जाते हैं, पैटर्न्स बदलने पड़ते हैं। और जिंदगी में हमें सिर्फ जो है वो सहना नहीं सिखाती, जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि कब रुकना है, कब बोलना है और कब अपने लिए खड़े होना है। I hope I'm making some sense. Hope this helps. Yeah, dear Masti, dil se on Radio Masti 24/7 Live.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text.

0: और इसी के साथ आज का ये एपिसोड ऑफ डियर मस्ती दिल से का बस यहीं तक। पता है आज के कितने सारे हमने लेटर्स सुने, राइट? मुझे एक बार बार बार आई केप्ट ऑन फीलिंग दैट हम सब ना अपनी जिंदगी में आंसर्स कितना ढूंढते रहते हैं, राइट? वी आर सो बिजी इन आवर माइंड्स, लेकिन कई बार हमें आंसर की नहीं, किसी के आई अंडरस्टैंड कहने की जरूरत होती है। किसी ने अपने रिलेशनशिप की कंफ्यूजन आज शेयर की, किसी ने काम और जिंदगी के बीच में बैलेंस ढूंढने की कोशिश की, किसी ने पेरेंटिंग के चैलेंजेस की बात की, किसी ने क्रश बाउंड्रीज और कितना सहे उस चीज की बात की। और इन सब के बीच में यही एक चीज मुझे कॉमन लग रही थी, हम सब बस समझे जाना चाहते हैं, राइट? कोई हमें समझ ले। और शायद इसीलिए मुझे ये लाइन भी बड़ी पसंद है, इट्स इन अ बुक, फीलिंग्स आर मेंट टू बी फेल्ट नॉट फॉट। हर इमोशन का एक मैसेज होता है। खुशी हमें बताती है कि क्या संभल कर करना है, राइट? डर बताता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, गुस्सा बताता है कि कहीं ना कहीं कोई बाउंड्री जो है वो क्रॉस हुई है, और दुख हमें याद दिलाता है कि हमने कभी किसी चीज या किसी इंसान से सच में प्यार किया था। इसीलिए अपनी फीलिंग से लड़ना जो है बंद कीजिए, उन्हें सुनिए, समझिए, और फिर धीरे धीरे उनके साथ जो है आगे बढ़ते हुए जाए। क्योंकि हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप दोबारा कभी नहीं रोएंगे। हीलिंग का मतलब होता है कि एक दिन आप रोकर भी उठ पाएंगे और फिर जिंदगी जी पाएंगे। आई रियली वॉन्ट टू टेक दिस मोमेंट एंड एवरी टाइम आई डू दैट आई वॉन्ट टू से थैंक यू उन सभी लिसनर्स को जो हमें यहाँ पर इतने ट्रस्ट के साथ ये सारी बातें लिखते हैं, अपनी कहानी हम तक भेजते हैं। तो वो हमारे लिए एक लेटर नहीं होता है, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस ओवर हियर, एंड बिलीव मी हम उस ट्रस्ट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप भी हमें अपने दिल की बात कोई हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इधर यू कैन व्हाट्सएप इट टू अस 9151896 3 पर, या फिर ईमेल भेज सकते हैं listener@radiomasti.com.sg। Always remember, यहाँ कोई नाम नहीं लिया जाता, you all know that, right? सिर्फ emotions यहाँ पे पढ़े जाते हैं, उन्हें पूरी इज्जत के साथ सुना जाता है। मैं हूँ आरजे आंसर रा आपकी, and आप सुन रहे थे डियर मस्ती दिल से on Radio Masti 24/7 Live। Take care of yourself, अपने आसपास सभी का जरूर ख्याल रखें, सबसे ज्यादा जरूरी अपना ख्याल रखें। Good night, take care, वापस मिलेंगे एक brand new episode के साथ, यही same time, same place.
1: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Rang Reza, Rang Reza.

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बार फिर से एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत। नमस्कार। गेम जय सिंगापुर सारू जय अखा सिंगापुर मारू जय। उसी शो में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ, जिसका नाम है लेजेंड्स। और लेजेंड्स में आजकल चल रही है द अचीवर सीरीज। मैं हूँ आपका हम सफर समर। आज एक बार फिर से एक और हस्ती की बात करने के लिए मैं आ गया हूँ। आज आपको उनसे मिलवाऊंगा जिनको फादर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, जिन्होंने पहला शिपयार्ड बनाया इंडिया में, पहली कार फैक्ट्री बनाई। और सच कहूं तो वास्तव में मेड इन इंडिया के समर्थक वही थे। वो जब भी बाहर जाया करते थे तो अपना सारा सामान इंडिया से ले जाया करते थे, इवन अपनी सारी टॉयलेट्रीज भी, ताकि उन्हें विदेश का कुछ भी काम में ना लेना पड़े। आपको लग रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताई देता हूँ। अच्छा, एक हिंट देता हूँ, कोशिश कीजिए कि आप भी उन्हें पहचान जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कुछ तो आइडिया लगा हुआ आपको। चलिए एक और, हिंदुस्तान शिपयार्ड्स, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स। चलिए अब आपको क्या सताना, मैं बिना कोई वक्त गवाए आपको बता देता हूँ कि आज के हमारे जो लेजेंड है वो है इन सभी कंपनीज के फाउंडर, और उनका नाम है वालचंद हीराचंद दोषी। नाम तो शायद आपने सुना होगा, लेकिन मैं उनकी जिंदगी का एक सफर आपको करा लाऊंगा। आखिरकार मेरा काम भी तो यही है, आपको कहानी के सफर पर ले चलना। और अभी हम लेजेंड्स की सीरीज में उनकी बात कर रहे हैं जिनके अचीवमेंट्स ने हमें कुछ अचीव करने की ताकत दी, रास्ता दिखाया। तो शुरू करने से पहले छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के

0: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एक बार फिर से कर रहा हूँ मैं आपका इस्तकबाल, स्वागत मैं हूँ। रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव पर एक बार फिर से कर रहा हूँ मैं आपका इस्तकबाल, स्वागत मैं हूँ समर, आपका हम सफर, उस सफर पर जहाँ चलने पर हम जीने की राह पाते हैं, हौसला और हिम्मत उन्हीं से पाते हैं। आज हमारे साथ हैं वो जिनके लिए कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, उनकी जिंदगी पर जीत का राज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनकी जिद, अविश्वास पर विश्वास और घनघोर निराशा के बीच आशा है। हाँ जी, और ये कोई और नहीं वालचंद हीराचंद दोषी हैं, जिन्होंने रेलवे कॉन्ट्रैक्टर से एक एंटरप्रेन्योर का सफर तय किया, कॉटन का बिजनेस भी किया, पर अपनी राह समंदर और आसमान तक तय की। वालचंद जी ने भारत का पहला शिप बनाया जिसका नाम था एसएस लॉयल्टी। ये जहाज बॉम्बे से लंदन की ओर गया था और ये दिन था 5 अप्रैल, और इसी दिन को नेशनल मैरिटाइम डे के तौर पर मनाया जाता है। कमाल की बात है ना, हम हर किसी चीज को अगर इतिहास की घटनाओं से मिलाकर जोड़कर सुने तो शायद हमको बहुत ही अच्छे से वो याद रह जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ इस दिन को याद रखने का तरीका। साल 1919 और अप्रैल का महीना भारत के इतिहास में ये बहुत खास था, नोटेबल। इस महीने में हुआ था जलियांवाला बाग कांड, बस तारीख जुदा है। 5 तारीख को भेजा गया था एसएस लॉयल्टी और 13 अप्रैल को हुआ जलियांवाला बाग गोलीकांड। एक तरफ देश इन चीजों से जूझ रहा था, दूसरी तरफ कुछ लोग बिना हारे बिना थके दुनिया भर में भारत का परचम लहराने की तैयारी कर रहे थे। यानी वही एक साल और वही एक महीना, एक सिक्के के लेकिन दो पहलू। आजादी जिस साल भारत को मिली उस साल यानी 1947 में वालचंद जी की कंपनी टॉप 10 कंपनीज में शुमार थी, और आज वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड न्यूक्लियर इक्विपमेंट और डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और भी बहुत कुछ है बताने को, जानेंगे एक ब्रेक के बाद, तो इस ब्रेक की है दरकार। इसके बाद एक बार फिर से हाजिर हो जाएगा समर आपके लिए सरकार, तो सुनते रहिए सिंगापुर और साउथ।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: हेलो जी, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर सीरीज। आज हमारे साथ हैं वालचंद इंडस्ट्रीज के फाउंडर वालचंद हीराचंद दोषी जी। उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के सोलापुर में। एक जैन फैमिली में ये पैदा हुए। ये साल था 1882 का, 1882। माँ का नाम था राजू और पिता थे हीराचंद। एक व्यवसायी और एक साहूकार थे वो। हीराचंद जी के सबसे छोटे बेटे थे ये, यानी कि वालचंद जी। इससे पहले इनकी एक बड़ी बहन और दो भाई थे, लेकिन उनको जन्म देने के महज 15 दिन बाद उनकी माँ गुजर गई और इनकी परवरिश इनकी आंटी उमा ने की, जिनके कोई बच्चा नहीं था। वेल, बेसिकली ये लोग रहने वाले तो थे गुजरात के, लेकिन महाराष्ट्र में ही सेटल हो गए थे। हीराचंद जी यानी वालचंद के फादर अपने फादर की डेथ के बाद सोलापुर चले गए और खुद के बड़े भाई सखाराम जी से अलग हो गए। यहाँ आकर उन्होंने थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ना सीखा। अंग्रेजी सीखने की वजह थी कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ना चाहते थे, जो उनके घर आया करता था, लेकिन वो पुराना अखबार भी पढ़ लिया करते थे। कहने का मतलब यही है कि वो अपडेटेड रहना चाहते थे। ये साल था 1880 का। फैमिली तब तक गुजरात ही रहा करती थी। वालचंद जी भी नहीं जन्मे थे, तो हीराचंद जी ने खुद को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया और उनकी इंग्लिश ने बड़ी मदद की और उनको अपनी कॉटन मिल खोलने की एक एजेंसी मिल गई। बॉम्बे के बड़े मिल ओनर मुरारजी गोकुलदास जी की ही मिल थी ये। इससे इनका सोशल स्टेटस भी बढ़ गया और म्यूनिसिपल काउंसलर ये बन गए। ये वो साल था जब वालचंद जी का जन्म हुआ, यानी 1882। इसके आगे की कहानी हम जारी रखेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज।

0: में कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, मैं लेजेंड्स के सफर पर। मेरा नाम है समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आज हमारे साथ एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वालचंद हीराचंद दोषी जी हैं, उनका सफरनामा है। हम फ्लैशबैक में थे और हम सफर तय कर रहे थे उस दौर का जब वालचंद जी का जन्म हुआ ही था, और तब तक उनके पिता खुद को बॉम्बे में स्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। उन्हें मिल्स की एजेंसी मिल गई थी। सोलापुर के बाद औरंगाबाद में भी इनको एक मिल की एजेंसी मिल गई, एंड फाइनली ये बॉम्बे शिफ्ट हो गए और मनी लैंडिंग का काम करने लगे, साहूकार बन गए, और तब इन्होंने सब बच्चों को भी अपने पास बुला लिया। वालचंद जी को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया, एल्फिंस्टन मिडिल स्कूल में, जो उस वक्त बॉम्बे का बड़ा स्कूल हुआ करता था। वालचंद जी कोई बहुत अच्छे या आदर्श स्टूडेंट नहीं थे, रादर वो तो बदमाश थे, बहुत ही शैतानी करते थे, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था उनका, अक्सर स्कूल बंक कर लिया करते थे। उनके टीचर ने भी वही स्ट्रेटेजी अपनाई जो अक्सर हर टीचर अपनाती है, उन्हें क्लास का मॉनिटर बना दिया। दिखते भी बड़े अच्छे खासे गदकाठी के थे, सो मॉनिटर बन गए। पर मॉनिटर बनने से उनके भीतर की लीडरशिप क्वालिटी और बढ़ने लगी, निखरने लगी। वो कुछ बुरी संगत में पड़ गए और हड़ताल वगैरह भी उन्होंने कर दी और रिंग लीडर बन गए। हालांकि उनको इस वजह से काफी प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन तभी बॉम्बे में प्लेग फैल गया महामारी के रूप में। ये साल था 1896 का। कहते हैं ये प्लेग बहुत ही भयानक था और बड़ी संख्या में इसने लोगों को माइग्रेट करने पर मजबूर कर दिया। इवन उस दौर में होने वाले क्रिकेट प्रतियोगिताओं पर भी इसका असर हुआ था, और वो भी बंद हो गई थी क्योंकि शुरुआती दौर में बॉम्बे में ही इन प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ करता था। वेल, कहानी पर वापस आते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या कहते हैं?

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: ब्रेक के इस बार आपका स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूं आपका हमरा ही नाम है मेरा समर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि वालचंद हीराचंद दोषी जी की। हम थे बॉम्बे के प्लेग पर जी, कहानी वही थी। इस एपिडेमिक को देखते हुए बच्चों को हीराचंद जी ने सोलापुर शिफ्ट कर दिया, हीराचंद जी यानी वालचंद जी के फादर। और इस तरह वालचंद जी की आगे की स्कूलिंग सोलापुर में ही हुई, और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे से उन्होंने आगे की पढ़ाई की, हायर स्टडीज की। इस बीच साल 1900 में उनको एक जीवन साथी मिल गया, उनकी शादी कर दी गई। शादी हुई सोलापुर के ही एक बैंकर की बेटी जीयू किलाचंद से। लेकिन फिर तकरीबन 7 साल बाद इनकी पत्नी की डेथ हो गई, और घर वालों की जिद के चलते वालचंद जी ने दोबारा शादी कर ली। इस बार भी उनकी वाइफ जो बनी वो भी बैंकर की ही बेटी थी, कस्तूर मेहता इनका नाम था। इनके 2 बच्चे हुए, लेकिन दोनों ही नहीं रहे। लेकिन तब भी वालचंद ने कस्तूर मेहता को हमेशा प्यार किया, और वो उन्हें अपना लेडी लक कहा करते थे। अच्छा, जब वो सेंट जेवियर्स में पढ़ रहे थे तब उनको हीराचंद जी ने बॉम्बे से पूना शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्लेग का कुछ भी असर उन पर पड़े, क्योंकि उनके 2 बड़े भाई प्लेग का शिकार हो गए थे। लेकिन उनका मन नहीं लगा पढ़ाई में, उन्हें लगा उनके पिता अकेले पढ़ गए हैं तो बड़े विचलित रहते थे वो। अब क्या किया उन्होंने, इसके आगे का सफर हम तय करें।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। लेजेंड्स में आज हम बात कर रहे हैं वालचंद इंडस्ट्रीज के फाउंडर वालचंद हीराचंद दोषी जी की। वालचंद जी ने अपने भाइयों के प्लेग में गुजर जाने के बाद अपने पिता का साथ देने की सोची और उनका बिजनेस संभालने का जिम्मा उठा लिया। हीराचंद जी ने उन्हें सोलापुर मिल्स की जिम्मेदारी सौंपनी चाही, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्हें कॉटन ट्रेडिंग में नहीं जाना था, लिहाजा उनके पिताजी ने उन्हें भेजा मोहाल, जहां मंडी में उन्हें ज्वार का व्यवसाय करना था। अब कोई अनुभव तो था नहीं, तो वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर्स थे वहां तो साहब। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया और वो था कि उन्होंने मनी लैंडिंग की वहां पर। उससे थोड़ा बहुत उन्होंने कमा लिया, यानी बिजनेसमैन कुछ ना कुछ करके कमा ही लेता है। इसके बाद सोलापुर में भी उन्होंने कॉटन मिल में हाथ आजमाया और अपने पिताजी के मना करने के बावजूद भी अपने अंकल सखाराम को पैसे दे दिए, और आखिरकार यहां भी उनको नुकसान हुआ, और ये नुकसान ज्वार बिजनेस से भी ज्यादा था। लेकिन हीराचंद जी को यह एहसास हो गया था कि वालचंद जी को बिजनेस सिखाना पड़ेगा। उन्होंने अपने एक रिलेटिव सेठ लाड़ा जी मुंद्रा जी के पास बिजनेस सीखने इन्हें भेज दिया। वहां इन्होंने बहुत कुछ सीखा। लाड़ा जी ने वालचंद जी को अपने की पर्सन से मिलवाया, क्योंकि वो खुद भी हीराचंद जी के अंडर में ही काम कर रहे थे। वेल, यहां पर कुछ ऐसा एहसास वालचंद जी को हुआ कि उन्हें खानदानी परिपाटी पर चलते जाने के बजाय नई राह ढूंढनी चाहिए। चाचा और पिता की मना करने के बावजूद उस नई राह पर वो चल पड़े। वो राह क्या थी मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि जो भी कुछ अलग करता है वो अपने लिए सफलता के नए द्वार खोलता है यकीनन। तो चलिए फिलहाल एक ब्रेक की राह।

0: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalam India Aadi Special Discount Sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalam India Aadi Special Discount Sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalam India Aadi Special Discount Sale.
1: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं, सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
2: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, कहानी में आप लौट आए हैं। चलिए सफर को कंटिन्यू करते हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आज बालचंद हीराचंद दोषी जी की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि लाडा राम जी के साथ बालचंद जी बिजनेस सीख रहे थे। दोनों अलग अलग जगह जाते और वहाँ की मंडियों में बिजनेस देखते। अंग्रेजों का जमाना था, ट्रेन की यात्रा का ये हाल था कि उन दिनों चाहे कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, उनको थर्ड क्लास में ही ट्रेवल करना पड़ता था, क्योंकि सबकी एक ही कैटेगरी थी, इंडियन। बालचंद जी ने ये सब देखा तो बड़े दुखी हो गए। ऐसे ही एक ट्रेन की यात्रा उन्होंने की थी। वेल, एक दफा तालीकोट से दोनों लौट रहे थे, लाडाराम जी और बालचंद जी। ट्रेन निकल चुकी थी जो मंडी से खरीदे हुए गुड़ यानी जैगरी के कार्ड्स को लेकर जाती थी। इसके बाद लाडाराम जी ने प्राइवेट बैलगाड़ी भी बुक नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा पैसे लगेंगे, या वो ये चाहते थे कि बालचंद जी देखें कि कैसा हार्डवर्क करना होता है कुछ बनने के लिए। तो वो उन्हें पैदल ही ले गए। रात भर वो लोग पैदल चलते रहे कच्ची राह पर, और सुबह जब पहुंचे तो बालचंद जी वहीं गुड़ की बोरियों पर सो गए। मंडी में भी उन्होंने देखा कि किस तरह से बस काम कर रहे हैं, घर से दूर हैं, वहीं रहते हैं, सुबह उठकर अपना खाना बनाते हैं, दुकान सजाते हैं, कितना मुश्किल होता है, घर वालों से कॉन्टेक्ट का कोई जरिया ही नहीं। ये देखकर वो निराश हो गए। उन्हें लगा कि कुछ और करना चाहिए, और तब उन्होंने कुछ और करने की सोची। क्या था वो कुछ और, मैं बताऊंगा आपको एक ब्रेक के उस पार।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप हैं समर के साथ लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। आज हम बात कर रहे हैं वालचंद हीराचंद दोषी जी की। कहानी का वही सिरा अगर पकड़े जहां हम इसे छोड़कर गए थे, तो मुझे याद आता है वो पल जब वालचंद जी महज 21 साल के थे और समझ गए थे कि अब नहीं हो सकता है काम। मंडी में दिन रात एक कर देना, रात को डिम लाइट में बैठकर दिन भर का हिसाब किताब। और तब उनको याद आया कि उनके सोलापुर में गुजारे दिनों में उन्हें एक साथी मिला था जिसे उन्होंने बड़े ही अच्छे इंटरेस्ट पर लोन दिया था और वो उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। एंड वो फॉर्मूला तो आपने सुना ही होगा, आई नो अ गाय हु नोज अ गाय। तो इन्हीं शख्स ने इन्हें एक ऐसे शख्स से मिलवाया जिन्होंने इनकी लाइफ बदल दी और वो थे लक्ष्मण राव बलवंत फाटक। ये शख्स रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे। इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ये साल था साहब 1903 और यही फाटक साहब आगे चलकर हिंदुस्तान फिल्म कंपनी के ओनर भी बने और दादा साहब फाल्के इनके पार्टनर थे। वेल, फाटक साहब रेलवे में थे और जब इनको इस बात का मालूम हुआ कि रेलवे महाराष्ट्र में एक 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाने वाला है येदासी से तड़वाल तक का, लेकिन इतने पैसे फाटक साहब के पास नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुलाकात की यंग मनी लेंडर वालचंद जी से। वालचंद जी को ये विचार अच्छा लगा और वो भी यही काम करना चाहते थे। उनके चाचा और उनके पिताजी ने उन्हें सख्त मना कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा जिद करने पर उनको बात माननी पड़ी और उनको इस शर्त पर पिताजी ने पैसे दिए कि इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आधा तुम्हें देना होगा। और फाइनली ये पहला कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया। वालचंद जी ने बहुत मेहनत की। वो हमेशा साइट पर रहते थे, हर मजदूर का काम देखते थे, सीखते थे, सिखाते थे, पूरे 7 मील का दौरा करते। अच्छा, इस काम के लिए उन्होंने एक छोटा घोड़ा भी खरीद लिया था जिसका नाम रखा ड्वार्फी। नैरो गेज की रेलवे लाइन बिच गई, लेकिन ड्वार्फी उनके साथ लंबे वक्त तक रही और यहां से उनकी रेलवे कॉन्ट्रैक्टर बनने की कहानी शुरू हुई। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। 7 मील का लंबा सफर तय करके हम थक गए ना, और सफर तो अभी जारी है और हमारे पास तो ड्वार्फी भी नहीं है।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalon India are the special discount sale. Rent 2 tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalon India RD special discount sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free, free, free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalon India RD special discount sale.
4: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: वेलकम बैक लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। आज हम बात कर रहे हैं वालचंद हीराचंद दोषी जी की और मैं हूं समर आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। रेलवे लाइंस का कॉन्ट्रैक्ट एक पूरा नहीं हुआ कि उन्हें दूसरा मिल गया। पहली की फिनिशिंग का काम फाटक जी को सौंपकर वालचंद जी बॉम्बे चले गए। इसके बाद तो एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। उन दिनों ब्रिटिश लोग इंडिया में रेलवे का तेजी से विस्तार करने में लगे हुए थे। वो पैसे कम देना चाहते थे और काम बहुत जल्दी चाहते थे। ऐसे में उनकी सारी जरूरतों के मुताबिक उनके पैमाने पर जो सबसे फिट बैठता था वो थे वालचंद जी। सबसे बड़ी बात थी उनकी इंटेलिजेंस, उनका बिजनेस माइंड। उन्होंने बड़ी चतुराई से काम किया और काम भी वक्त पर किया और प्रॉफिट भी कमा लिया। सबका जिक्र कर पाना तो यहाँ मुश्किल है क्योंकि वो जिस तरह से सारे अरेंजमेंट करते थे, मैनेज करते थे, वो कमाल होता था। वेल, इसके बाद उन्होंने यही काम जारी रखा जब तक कि उनकी फाटक जी के साथ पार्टनरशिप चलती रही। और फिर एक रोज उनकी मुलाकात मिस्टर वॉटसन से हुई और यहाँ से एसएस लॉयल्टी का सफर शुरू हुआ। हाँ जी, इस जहाज के बारे में मैंने आपको बताया ही था ना। उन दिनों इंग्लैंड तक स्टीमर्स की काफी कमी थी तो इस मौके को भुना लिया हमारे आज के लेजेंड ने, यानी कि वालचंद जी ने। उनके पिताजी हमेशा डरते थे कि ये कहीं गलत तो नहीं जा रहा है, पर फिर उन्होंने हर बार अपने पिताजी को गलत साबित किया और जो भी राह पकड़ी उस पर अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहे। माइनिंग में उन्होंने हाथ डाला, शिपिंग इंडस्ट्री में भी उनका बोलबाला रहा और रोड कंस्ट्रक्शन में भी वो आगे आए। और एक और उपलब्धि जिसे भूला नहीं जा सकता है वो है भोरघाट्स। भोरघाट्स बॉम्बे से पूना के बीच में बनाई गई टनल्स हैं जहां से ट्रेन्स गुजरती हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद।

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर एक बार फिर से हाजिर हो गया लेकर आज का लेजेंड्स। और आज आखिरी मुलाकात में आपका कर रहा हूं मैं एक बार फिर से स्वागत। खंडाला से करजत के बीच स्थित भोर घाट टनल्स नहीं होती तो यात्रा उतनी आसान कहां होती, लेकिन इसे आसान बनाने का काम किया हमारे आज के लेजेंड ने, जी वालचंद हीराचंद दोषी जी ने। वालचंद जी ने काफी वक्त तक टाटास के साथ भी काम किया, एक साथ पार्टनरशिप में, मगर जब लंदन फाउंडेशन सोसाइटी ने इन पहाड़ियों के बीच टनल बनाने की सोची और उसके लिए टेंडर निकाला तो वालचंद जी अकेले इस मैदान में कूद पड़े। उन्होंने ये देखने के लिए अंडरग्राउंड रेलवे कैसे बनता है लंदन जाने की सोची। वहां जाकर वो दंग रह गए, ये बहुत मुश्किल लगा उनको। उनको लगा उनके इंजीनियर शिवचंद्र बनर्जी ये काम नहीं कर पाएंगे, जबकि वो इंडिया में उनके सारे फर्स्ट क्लास ऑपरेशंस हैंडल करते थे। उन्होंने इंडिया लौट कर ब्रिटिशर्स को कह दिया, आप ये काम टाटास को दे दीजिए, वो लोग कर लेंगे। लेकिन बात वही है, जिस रेट में टाटास ये काम करते उसकी आधी में वालचंद जी करने वाले थे, लिहाजा ब्रिटिशर्स की पहली पसंद वालचंद जी थे। अब वालचंद जी ने प्लानिंग शुरू की। उन्होंने लंदन से एक बड़े इंजीनियर को बुला लिया, उनका नाम था जे पॉलॉक। अच्छा, मशीनरी का क्या करते, तो मशीनरी टाटा से किराए पर ले ली, उसका रेंट दिया गया। उनको पता भी नहीं था कि ये किस लिए ली गई है। वेल, और भी बहुत सारे जुगाड़ लगाए गए और नतीजा भोर घाट्स, यानी रास्ता आसान, आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता आसान। और यही तो हमारे लेजेंड्स करते हैं, इसीलिए तो वो लेजेंड्स कहलाते हैं। टनसा लेक से मुंबई में बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के जरिए पानी पहुंचाने का काम हो, जाने कितने ही अनगिनत रेलवे ब्रिजेस हो, हिंदुस्तान शिपयार्ड हो या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सिर्फ एक ही नाम वालचंद हीराचंद दोषी। उनकी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन जितनी मैं सुना सकता था आपको सुना दी। इस वक्त में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा एक और शख्सियत के साथ, या कभी वक्त मिला तो इन्हीं की कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो आप जाना होगा, और जाने के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। इजाजत दे दीजिएगा, लेकिन साथ में कुछ वादे भी करते जाइएगा। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Raat akeli hai, aankhein bhi hain.
3: Raat akeli hai to kya? Hum to aapke.

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है जोश में रहो।
2: हश हश हश पापा स्लीपिंग।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

साधारण सी बात है, जब भी कोई बालक जन्म लेता है तो उसके रोने की आवाज सुनकर सब खुशी मनाते हैं। भक्त कबीर ने कितनी गहराई से सोचा होगा इस बात को, जो इतना बड़ा संदेश मानव जाति को दे दिया।

एक चादर के समान समझते हुए भक्त कबीर ने लिखा है, चदरिया झीनी रे झीनी, ये शरीर रूपी चादर किस प्रकार बनी, कैसे इस चादर का निर्माण हुआ,

शरीर ने जन्म लिया। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। रंगरेज कौन? गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया।

0: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।
1: समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती

रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: यू नो व्हाट, विंडो शॉपिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। चलो ठीक है, आज सुबह सुबह ना आपको एकदम शॉपिंग वाले मूड पर ले आती हूँ। हेलो हाय, मैं आरजे ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड यू नो व्हाट, नॉर्मल शॉपिंग के प्लान्स ना सुबह सुबह बना लेने चाहिए, बिकॉज शाम होते होते आपका शेड्यूल और पैक होता जाता है और आप चीज़ें मिस करते जाते हो, राइट? सो मैं आपको ये बोल रही थी कि विंडो शॉपिंग कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन विंडो आप जब खोलते हैं तो एक ना आप माइंडसेट कर लेते हैं, इस कलर कॉम्बिनेशन के, इस तरह के, इस डायरेक्शन में कपड़े खरीदने हैं, इस डायरेक्शन में वॉचेस देखनी है, इस डायरेक्शन में ये करना है, वो करना है। और उस डायरेक्शन के साथ जब आप ऑन ग्राउंड खरीदारी के लिए जाते हैं ना, तो ज्यादा माथापच्ची नहीं होती, टाइम वेस्ट नहीं होता, बिकॉज आपको तब तक आधा पता होता है कच्चा पक्का कि मुझे ये देखना है और ये नहीं, और ये और ये नहीं। चलिए ऑन द स्टोर मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड डेफिनेटली बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने, सो डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट, बाय।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
5: जीजी
4: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
5: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: सो बात इतनी सी है कि हर जगह आपकी एक्टिंग काम नहीं आती, हर जगह आपकी पॉपुलैरिटी, आपका चेहरा काम नहीं आता। तो एक्टर बन जाने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, एंड दैट्स अ हार्श रियलिटी मेरी जान। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि आपको पता है राजपाल यादव कुछ करोड़ के चेक बाउंस केस में जेल चले गए थे और फिर उन्हें कुछ वक्त के लिए बेल मिल गई। फिर उनको बहुत सारे रूल्स समझाए गए जिन्हें उन्हें कमिटमेंट्स को फॉलो करना था, उन्होंने नहीं फॉलो किया और उनको वापस जेल जाना पड़ा। और राजपाल यादव ने इसी मौके का फायदा उठा के एक डायलॉग भी मार दिया कि भाई जो लॉ है ये कोई एक्टिंग की या मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है जिन्हें आप अपने हिसाब से ढाल लें, पर जो लॉ होता है उसका पूरा विश्वास रखना पड़ता है, उसे फॉलो करना पड़ता है। तो बाय द टाइम बहुत सारे एक्टर्स जो हैं जैसे ही कंट्रोवर्सीज में आते हैं तो अपने आप को और अच्छा डिफाइन करने के लिए उनके अपने अपने तरीके निकल कर आ जाते हैं, राइट। चलिए ऑन दिस नोट मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने सुनाने के लिए, डेफिनेटली बहुत सारे डिस्कशंस करने के लिए आ चुकी है। सो डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: You know what? अब तो एक्टर आर माधवन ने भी कह दिया है कि उनकी ये जो उम्र है जो पता नहीं चलती है, उसका राज ये है कि बिल्कुल हेल्दी पुराने जमाने वाला, अपने पेरेंट्स के टाइम वाला सिंपल साधारण खाना जो होता है ना, वो खाना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यार, प्रोटीन के लिए बहुत सारी चीज़ें इनटेक करनी चाहिए, लेकिन हाँ, पुरानी स्टाइल में। ऑफ कोर्स यार, आप भी अपनी दादी माँ वाली स्टाइल में ना, गुड़ और बहुत सारे नट्स के साथ ना चिक्की बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, उसकी कैंडीज बना सकते हैं, एंड यू कैन हैव इट डेफिनेटली। और अब ये ऑर्गेनिक नट्स मिलेंगे कहाँ से आपको? अरे घर बैठे बैठे आ जाएंगे यार, ggmartonline.com से, राइट। अगर आप इनकी साइट पे पहुंचेंगे तो आपको रोस्टेड एंड सॉल्टेड पिस्ताचियो से लेकर, हेजल नट्स से लेकर, पम्पकिन सीड्स से लेकर, असॉर्टेड कैशियोज से लेकर, प्रीमियम रेजन से लेकर मखाना तक हर एक चीज मिल जाएगी। क्रिशेबल नट्स, जामुन, ट्राइंगल, गुलकंद जो इनकी स्पेशलिटी है, वो भी आप पिक कर सकते हैं। सो ggmartonline.com आप विजिट कीजिए। मैं आरजे अनुपुर थोड़ी सी देर में गानों के उस पार वंस अगेन आपसे यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए विजिटिंग करने आएगी। सो डोंट गो एनीवेयर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
4: जीजी।
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
4: GGMart, your personal grocer।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: किसी मूवी के लिए इमरान हाशमी को अप्रोच किया गया। उस मूवी का इतिहास भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस नंबर है, लेकिन इमरान हाशमी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मूवी को लेकर उन्हें पहले से आभास हो गया था। सो हेलो, हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और देखिए, मैं आपसे इतने सारे सवाल जवाब पूछती रहती हूँ, लेकिन अभी लेकर आ चुकी हूँ वन ऑफ द आइकॉनिक डायलॉग। हाँ जी, सो जो डायलॉग मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो डायलॉग कौन सी मूवी से है ये आपको गेस करके बताना है। तो डायलॉग है,
3: जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते हैं उस रेस का सिकंदर मैं हूं।
2: राइट, अगर आपने पहचान लिया है मूवी का नाम तो क्विकली बता दो मेरी जान 9151-8963 पे व्हाट्सएप या टेक्स्ट करके, या रेडियो मसी 24/7 लाइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे डीएम करके। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि ये वो मूवी है जो 2018 में 100 वर्स्ट मूवीज की लिस्ट में शुमार हो चुकी थी। बस इतनी हिंट बहुत है, डोंट गो एनीवेयर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.